आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. प्रोग्राम है भोर सुहानी. आप खुद को नहीं बदल सकते, मगर खुद को बदलकर औरों में बदलाव जरूर ला सकते हैं.

परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। और इसी विचार के साथ मैं आपसे लेती हूँ अनुमति। जल्द मुलाकात होगी। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

0: और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
1: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार निवेश रक्षा ऊर्जा विकास सहयोग स्वास्थ्य क्षमता निर्माण संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से 40 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए देशव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत करेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद के शपथ लेने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरल, माहे, दक्षिण आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: FM Rainbow 101.9

0: सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
0: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मैंने पहली बार देखा द लेजेंडरी मून वॉक, और उस एक परफॉर्मेंस ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी जो आज भी एमजे के फैंस के दिलों में कायम है. सो ट्रूली. एंड यस, बिली जीन सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक लेगेसी है. और जी हाँ, इसी नोट पर लेट्स कीप द वाइब गोइंग, क्योंकि यहाँ पर बीट के साथ साथ जुड़ती है एक याद. सो स्टे ट्यून फॉर मोर टाइमलेस म्यूजिक कमिंग योर वे ओनली ऑन FM रेनबो 101.9 विथ नमस्ते हेलो आदाब. और आपको बता दें कि आज का जो ये म्यूजिकल सफ़र है ये और भी खास होने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ मुझे ज्वाइन कर रही हैं मेरी को आरजे आरजे शमा. तो जी हाँ, ये भी आपसे थोड़ी देर में ही जुड़ेंगी. लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है जो मैं आपके लिए प्ले करना चाहूँगी. तो सुनते रहिए, ये है FM रेनबो 101.9. और जो नेक्स्ट सॉन्ग आपके लिए आ रहा है वो है फ्रॉम द फिल्म दिल मांगे मोर. तो सुनते रहिए, ये है FM रेनबो 101.9.

Music, by which I mean a beautiful blend of Hindi melodies along with some soulful Western hits. खैर दोस्तों, आज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन पढ़ी दैट गोज लाइक टाइम हैज़ अ वंडरफुल वे ऑफ शोइंग अस वॉट रियली मैटर्स. और सच कहूँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वक्त से बड़ा टीचर शायद और कोई हो ही नहीं सकता. कभी कभी ना हम लाइफ में बस भागते ही रह जाते हैं, कभी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे तो कभी अननेसेसरी वरीज के पीछे, और हम भूल जाते हैं वॉट ट्रूली डिजर्व्स आर टाइम एंड एनर्जी. बट देन टाइम पासिस, सिचुएशंस चेंज, और धीरे धीरे हमें समझ आता है कि असली इम्पॉर्टेंस किसकी थी और क्या बस एक फेज था लाइफ में. हो सकता है कि वक्त हमें ये नहीं बताता कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि ये बताता है कि हमें किसकी ज़रूरत है. और आपने नोटिस किया होगा कि कभी जिन लोगों के बिना हमें लगता था कि हम रह ही नहीं सकते, वक्त के साथ वही लोग अजनबी बन जाते हैं. और जिन पलों को हमने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, बाद में वही मोमेंट्स हमारी सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं, है कि नहीं? सो मे बी इंस्टेड ऑफ रशिंग थ्रू लाइफ, वी शुड पॉज अ लिटिल, फील अ लिटिल मोर एंड वैल्यू द पीपल एंड मोमेंट्स दैट मेक आवर हार्ट्स फुल फील फुल. क्योंकि आखिर में मैटर ये नहीं करता कि हमारे पास कितना था, मैटर ये करता है कि सच में इम्पॉर्टेंट क्या था और कौन था जो हर वक्त में हमारे साथ बना रहा. सो यस, टेक अ मोमेंट टुडे टू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव, बिकॉज टाइम हैज़ इट्स ओन ब्यूटीफुल वे ऑफ रिवीलिंग व्हाट ट्रूली मैटर्स. एंड ऑन दैट नोट डियर लिसनर्स, लेट्स लिसन टू सम मोर अमेजिंग सॉन्ग्स ओनली ऑन FM रेनबो 101.9. वेल, यू आर लिसनिंग टू नमस्ते हेलो आदाब. एंड यस, द नेक्स्ट ट्रैक कमिंग अप इज़ बड़ी मुश्किल है बाई अभिजीत.

0: 마찬가지 매자로
1: FM Rainbow 101.9
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 और स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:31 मैं उनिशा आपके साथ विद सम लव

0: ರೇನ್ಬೋ 101.9.
1: दोस्तों आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 के साथ और स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं सुबह के 10:42 और 23 सेकेंड। एंड जी हाँ, ये जो म्यूज़िकल जर्नी है जिसे कहते हैं नमस्ते हेलो आदाब, ये और भी खूबसूरत हो चुकी है क्योंकि आज यहाँ पर मेरी एक हमसफ़र हाजिर हैं। जी हाँ, वैसे तो हमेशा मैं ही आपकी हमसफ़र रहती हूँ इन कुछ खूबसूरत गानों के साथ, लेकिन आज यहाँ पर मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ कि मुझे यहाँ पर कोई मिल गया है जो मेरे साथ रहने वाला है। एंड मैंने बताया था कि आरजे शमा है मेरे साथ, सो यस। एंड इनके मन में काफ़ी सारे सवालात हैं जो ये आपसे पूछना चाहती हैं। तो जी हाँ शमा, क्या आप रेडी हैं अपने क्वेश्चंस के साथ? क्योंकि हमारे लिसनर्स तो ऑफ कोर्स रेडी हैं, वो हमसे जुड़ चुके हैं, और मैं जानना चाहूँगी कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे लिसनर्स से पूछना चाहते हैं। तो दिल खोल कर क्वेश्चन पूछिए क्योंकि हमारे लिसनर्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सुन रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज का सवाल है बड़ी ही खूबसूरत और थोड़ी सोचने वाली है। अगर आपके आज के मूड को एक गाने में बयां करना हो तो वो कौन सा गाना होगा और क्यों? क्या वो कोई हैप्पी सॉन्ग होगा, कोई इमोशनल ट्रैक, या फिर ऐसा गाना जो आपकी करेंट लाइफ सिचुएशन को परफेक्टली डिस्क्राइब करता हो, या कोई ऐसा गाना जो आपको हर मुश्किल वक्त में मोटिवेट करता हो? और अगर आपको किसी खास इंसान को एक गाना डेडिकेट करना हो तो वो कौन सा होगा?
1: जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने, क्योंकि हमारा जो मूड है ना, वो हर दिन के साथ बदलते रहता है। कभी हम खुश होकर उठते हैं तो कभी सैड होकर उठते हैं, और कभी कभी ना मूड को बयां भी नहीं किया जाता है हमसे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो सब कुछ होता है जो हमें चाहिए होती है, बट स्टिल वी फील कि कुछ मिसिंग है ना।
2: बिल्कुल।
1: तो उस मूड को हम बयां ही नहीं कर सकते, और कमाल की बात ये है कि हमारे हर एक मूड के लिए एक गाना अवेलेबल है, क्योंकि ऐसे लाखों गाने हैं जो जब भी कोई लिखता है तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी मूड के हिसाब से लिखता है, जो जैसे मूड में है। अगर जो लिरिसिस्ट है वो सैड मूड में है तो वो सैड सॉन्ग लिख देते हैं, हैप्पी मूड में है तो मूड हैप्पी वाला सॉन्ग लिख देते हैं, और कश्मकश में है तो वैसा ही कुछ सॉन्ग लिख देते हैं ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है, और मैं भी लिसनर्स से पूछना चाहूँगी कि कौन सा ऐसा गाना है जो आपके मूड के हिसाब से सेट बैठता है। अगर आपका आज का मूड आपको बयां करना हो तो आप उस गाने के बारे में बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 4023234822। और खैर आरजे शमा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आप अपने मूड के हिसाब से कोई गाना बताना चाहें तो वो कौन सा गाना होगा?
2: एक्चुअली मैं एक गाना है जो डेडिकेट करना चाहूँगी एक इंसान को जो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में बहुत ख़ास है
1: जी।
2: और वो गाना है तेरे जैसा यार कहाँ।
1: वाह, क्या बात है। एंड आई एम श्योर कि आपका कोई ख़ास दोस्त होगा जिनके लिए आप ये प्यारा सा गाना डेडिकेट करना चाहती है। तो जी हाँ लिसनर्स, अगर आपको भी उन गानों को बताना है जो आपके मूड के हिसाब से सही बैठते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप की बात करें तो हमारे साथ एक लिसनर जुड़े भी हुए हैं, यहाँ पर सरवर अली जी हैं हमारे साथ, एंड ये लिखते हैं गुड मॉर्निंग निशा जी। तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इन्होंने फ़िलहाल हमारा टॉपिक तो नहीं सुना था लेकिन पहले ही एक गाने की फरमाइश की है। वैसे आज प्रेम धवन जी जो कि इंडियन लिरिसिस्ट और म्यूज़िक कंपोज़र थे, उनकी आज कहते हैं कि उनकी बरसी है, तो उनका एक गाना सुनना चाहेंगे, तो मैं कोशिश करूंगी, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो दोस्तों मैं अपनी पसंद का एक सॉन्ग आपको सुनवाना चाहूंगी, एंड ये जो सॉन्ग है दिस सॉन्ग इज़ फ्रॉम द फिल्म लज्जा जो कि आई थी साल 2001 में, एंड माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला पर फिल्माया गया था ये गीत। काफ़ी खूबसूरत गीत है, ऑडियो तो ऑब्वियसली माधुरी जी

ये तो खूबसूरत है ही. एंड जो वीडियो सॉरी वीडियो काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि माधुरी जी नाच रही हैं, एंड ऑडियो भी काफ़ी काफ़ी खूबसूरत है. तो चलिए सुनते हैं इसी गीत को. और ये है FM रेनबो 101.9, शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! दोस्तों आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद के साथ ऑन एफएम रेनबो 101.9 शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब। और जी हाँ, जैसा कि हमने पूछा था कि अगर आपको आपके मूड को किसी सॉन्ग के साथ बयां करना हो तो वो कौन सा सॉन्ग होगा, तो यहाँ पर हमारे साथ एक लिसनर जुड़ चुके हैं एंड ये है जय, जो लिखते हैं गुड मॉर्निंग निशा जी और शमा जी। तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये अपने मूड के हिसाब से माइकल जैक्सन का कोई भी गाना सुनना चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि चाहे मूड कुछ भी हो, माइकल जैक्सन के गाने पूरे मूड का जो माहौल है वो बना देते हैं। तो वाह क्या बात है जी। हाँ तो चलिए बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और चलेंगे माइकल जैक्सन के एक सॉन्ग की तरफ। एंड यस

सुबह के 11:04 मिनट दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ। शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब। जी हाँ, और एक बार फिर से हम हाजिर हैं वही कुछ खूबसूरत गीतों के साथ, कुछ खूबसूरत यादों के साथ और एक खूबसूरत सा साथ जो कि है आपका और हमारा। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आज स्टूडियो में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ हैं RJ शमा। तो यस, हम दोनों यहाँ पर हैं और हमारी पसंद के कुछ गाने जो उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे। एंड यस, कुछ देर पहले RJ शमा ने आपसे पूछा था कि अगर आपको अपना मूड बयां करना हो तो आप किस गाने के सहारे बयां करेंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 4023234822, तो रहेगा आपके आंसर्स का इंतज़ार। एंड यस, इस सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से सॉन्ग के साथ। सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9, आप जुड़े हुए हैं नमस्ते हेलो आदाब के साथ।

खूबसूरत सॉन्ग्स है आज हमारी प्लेलिस्ट में, क्योंकि यहाँ पर आरजे शमा भी है मेरे साथ, जिनकी प्लेलिस्ट मेरी प्लेलिस्ट के साथ आज मैच हो गई है. और यहाँ पर कमाल के गाने हैं हमारे पास, कुछ हिंदी एंड कुछ वेस्टर्न हिट्स. एंड इसी के साथ विष्णु जी की सॉन्ग रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गई है. उषा उत्तम का एक सॉन्ग सुनना चाहते हैं, हरी ओ ओम हरी. तो जी हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ एंड चलते हैं एक और खूबसूरत से सॉन्ग की तरफ. एंड ये है टेलर स्विफ्ट की आवाज़ में, शेक इट ऑफ. तो सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9.

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: Rainbow 101.9
3: All right, it's 11:29 past 11 by the studio clock. Dear listeners, you're tuned in to Akashvani Hyderabad, FM Rainbow 101.9. Show chal raha hai, Namaste, Hello, Adab, jahan par aap sun rahe hain kuch behtareen nagme. Aur ji haan, main hoon Nisha aapke saath. तो यस, यहाँ पर कुछ खूबसूरत गाने तो है ही और साथ में है आपका खूबसूरत साथ, यानी कि आपके मैसेजेस। जी हाँ, एंड हमने एक सवाल पूछा था आपसे, हो सकता है कि आपके दिमाग से निकल गया हो, और हमारे कुछ लिसनर्स हैं जिनके जहन में अभी भी ये क्वेश्चन है और उन्होंने आई थिंक अपनी तरफ से आंसर भी किया है। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि आपके मूड को कौन सा सॉन्ग फिलहाल डिफाइन करता है। एंड यहाँ पर हमारे कुछ लिसनर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं एंड कुछ सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट भी आई है। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं उमर खान फ्रॉम फलकनुमा पैलेस एंड ही वांट्स टू लिसन टू अ सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म बेफिक्रे। वेल, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आपके पसंद का ये सॉन्ग मैं प्ले कर पाऊँ। एंड देन वी हैव अनदर मैसेज फ्रॉम मुनीर अली, ये लिखते हैं कि अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आरजे निशा जी। तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी एक सॉन्ग सुनना चाहते हैं, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ओके, तो मुनीर अली जी, मैं कोशिश करूँगी कि ये सॉन्ग मैं प्ले कर पाऊँ। और इनका एक मैसेज ये भी कहता है कि मॉर्निंग्स आर अ गिफ्ट रिमाइंडिंग अस दैट वी हैव अनदर अपॉर्चुनिटी टू परस्यू आवर ड्रीम्स। गुड मॉर्निंग, कीप इट सिंपल टुडे बट कीप इट हैप्पी। चलिए, बहुत ही कमाल की बात है, कीप इट सिंपल बट कीप इट हैप्पी। जी हाँ, काफ़ी बार हम बहुत कुछ एक साथ मिला देते हैं, मैं सब कर देते हैं, तो इससे अच्छा है कि अपनी लाइफ को सिंपल रखें, हर एक डे को, हर एक मोमेंट को जितना हो पाए उतना सिंप्लिसिटी के साथ आगे बढ़े। एंड यस, अगर उस सिंप्लिसिटी के साथ और थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी के साथ अगर हम आगे बढ़े ना, तो हम हैप्पी ही रहेंगे। वेल, इसीलिए लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, यानी जलेबी की तरह गोल गोल नहीं घुमाना, ना ही अपनी बातों को और ना ही अपनी ज़िंदगी को। वैसे तो ज़िंदगी काफ़ी वैसे भी घूमी हुई है ना, जो हमें हमेशा चक्कर दिला देती है। खैर, आगे बढ़ेंगे एंड आपको लिए चलते हैं कुछ सॉन्ग्स की तरफ। और फिलहाल तो यहाँ पर उमर खान जी ने एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है फ्रॉम द फिल्म बेफिक्रे, तो उसी की तरफ चलते हैं। सुनते रहिए, ये है एफएम रेनबो 101.9 और कुछ ही देर में आरजे समा है हमारे साथ, तो वो भी आपसे जुड़ना चाहेंगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।

दोस्तों आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब और मैं हूं आपकी होस्ट आरजे शमा। अभी अभी आपने सुना बेहद खूबसूरत गीत ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है और फिल्म है राजी। और अब शायद आप सोच रहे होंगे कि आज हमने इस खास देशभक्ति गीत से शुरुआत क्यों की। तो दोस्तों इसके पीछे एक ऐसी वजह है जो दिलचस्प भी है, प्रेरणादायक भी और देशभक्ति के रंग में पूरी तरह सराबोर भी। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नौजवान की जिसकी पूरी जिंदगी ही इस गीत के मायने समझाती है। एक ऐसा युवा जिसने अपने सपनों से पहले अपने देश को चुना। एक ऐसा नाम जिसने बहुत कम उम्र में ये साबित कर दिया कि सच्चा हौसला उम्र का मोहताज नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी खास पेशकश समर्पित है अल्लूरी सीताराम राजू को। एक ऐसा वीर जिसकी कहानी सुनते हुए कभी गर्व होता है तो कभी दिल भर आता है। जरा सोचिए, सिर्फ 26-27 साल की उम्र, जब आज की उम्र में ज्यादातर लोग अपने करियर, अपने सपनों और अपनी दुनिया बनाने में लगे होते हैं, तब एक नौजवान अपने देश और अपने लोगों के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहा था। तो आखिर कौन थे अल्लूरी सीताराम राजू, क्या थी उनकी कहानी और क्यों आज भी उन्हें जंगलों का वीर कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, आज इसी दिलचस्प सफर पर चलते हैं और जानते हैं उस महान क्रांतिकारी की कहानी जिसने अपने साहस से इतिहास रच दिया। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा मेरे साथ।

वेलकम बैक। और आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, और स्टूडियो की घड़ी में बज रहा है 11:46। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अल्लूरी सीताराम राजू की। एक ऐसा नाम जिसने बहुत कम उम्र में वो कर दिखाया जिसे सुनकर आज भी हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश के मुगल्लू गाँव जो भीमावरम के पास मौजूद है वहाँ हुआ था। बचपन से ही वो बेहद शांत, समझदार और अलग सोच रखने वाले थे। युवा अवस्था में ही उन्होंने सादगी और समाज सेवा का रास्ता चुन लिया। वो जंगलों, पहाड़ों और कई दूर दराज इलाकों में घूमे, और इन्हीं यात्राओं के दौरान उनका सामना आदिवासी समुदाय की तकलीफों से हुआ। प्यारे लिसनर, आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। तो बात वहां तक पहुंची थी जहां उन्होंने आदिवासियों का दर्द करीब से महसूस किया। उस समय अंग्रेज सरकार ने ऐसे कानून बना दिए थे जिनकी वजह से आदिवासी अपने ही जंगलों में बेबस हो गए थे। उनकी जमीन छीनी जा रही थी, उन्हें जबरन सड़क और रेल बनाने के कामों में लगाया जाता था। और यहीं से

0: लूरी सीताराम राजू के दिल में विद्रोह की चिंगारी जली और फिर शुरू हुआ रामपा विद्रोह साल 1922। जरा इमेजिन कीजिए, घने जंगल, चारों तरफ सन्नाटा और अचानक अंग्रेजी पुलिस चौकियों पर हमला। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये था आजादी का बिगुल। उन्होंने आदिवासी युवाओं को संगठित किया और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, अचानक हमला, हथियार कब्जे में लेना। फिर जंगलों में गायब हो जाना। अंग्रेज हैरान थे, क्या करे और क्या ना करे। अल्लूरी सीताराम राजू, जिनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर अंग्रेज सरकार ने उनके सिर पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया, लेकिन वो रुके नहीं। आखिरकार 1924 में अंग्रेजों ने धोखे से उन्हें पकड़ लिया, उन्हें एक पेड़ से बांध दिया गया और 7 मई 1924 को गोलियों से छलनी कर दिया गया। उस समय मात्र उनकी उम्र 27 वर्ष थी। आइए सुनते हैं एक गाना उन्हीं की याद में।
1: सिरी पेंटिंग इंस्टीट्यूट, हिमायत नगर, जुबली हिल्स। ఈ వేసవి సెలవుల్లో పెయింటింగ్ లో ఆసక్తి ఉన్న వారికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వబడును. ఫోన్ నంబర్ 9849419642.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। एक रिपोर्ट।
1: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये 2 दिवसीय सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। ये पहल व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और देश के कार्यबल के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा

तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे सब कभी तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे नहीं झुके। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है।

0: कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे सब कभी तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे नहीं झुके। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। प्रवर्तन निदेशालय पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये कार्रवाई ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण GMADA से भूमि उपयोग परिवर्तन लाइसेंस प्राप्त करने में हुई धोखाधड़ी और जनता से करोड़ों रुपए की ठगी के सिलसिले में की जा रही है। निदेशालय नितिन गोहल की तलाश कर रही है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. In a social media post on the completion of 1 year of Operation Sindoor, Mr. Modi said the Indian Armed Forces had displayed unparalleled courage, precision and resolve during the operation. He said the forces gave a fitting response to those who dared to attack innocent Indians at Pahalgam. Mr. Modi also added that the entire nation salutes the armed forces for their valour. President Draupadi Murmu has called Operation Sindoor a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism and all forces that threaten our sovereignty and the safety of citizens. In a social media post, she said the brutal attack at Pahalgam was met with befitting and exemplary precision. She reiterated that those who seek to threaten Bharat must know that our nation stands vigilant, united and prepared to respond with strength. The Indian Army today shared a video marking a year of Operation Sindoor, India's calibrated and precise response to Pakistan-sponsored terrorism. In a social media post, the Indian Army highlighted the country's resolute response and reaffirmed its commitment to safeguarding the country's sovereignty and its citizens.
2: India will identify, track and punish every terrorist and their backer.
3: और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
1: As Operation Sindoor completes 1 year today, Prime Minister Narendra Modi has changed his display picture on social media to honour the valour of the Indian Armed Forces. He has also urged countrymen to change display pictures on all social media handles as a mark of respect to our forces and their success during Operation Sindoor. Along with the Prime Minister, his cabinet colleagues have also changed their display pictures across all social media handles. The picture has a black background with the words Operation Sindoor and the national flag on top of it. In Tamil Nadu, TVK Chief Joseph Vijay met Governor Vishwanath Arlekar for the second time at the Lok Bhavan today. It is said that the governor had called him. The governor is also likely to depart for Kerala after the meeting with him. Yesterday as well, Vijay met the governor and presented the list of the party MLAs and also the support letter from the Congress. At this juncture, he needed more support to show a majority. VCK leader Thirumavalavan has said that his party would decide on supporting Vijay after the Legislative Party meeting today. His party has two MLAs.

0: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-.

0: ರೇನ್ಬೋ 101.9
1: अब टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
2: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून डियर लिसनर्स, योर ट्यून इन टू आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 शो चल रहा है। नमस्ते, हेलो, आदाब। और जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक म्यूज़िकल सफ़र तो है ही, लेकिन यहाँ पर म्यूज़िक के साथ साथ हम थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं आपसे, और फ़िलहाल हम चलेंगे कुछ बातों की ही तरफ। वेल दोस्तों, आज ना मैंने एक बड़ा ही नया सा वर्ड सुना जिसका मीनिंग सच में बहुत ही प्यारा है, और इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी इस वर्ड के मीनिंग को शेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं ट्रिगर्स के बारे में, है ना। और ट्रिगर्स हम जानते हैं कि वो मोमेंट्स होते हैं, वो बातें होती हैं, वो यादें होती हैं जो अचानक से सैडनेस, डिस्कम्फर्ट या पेन ले आती है हमारी ज़िंदगी में, है ना। ट्रिगर्स हमें वापस ले जाती हैं उन जगहों पर जहाँ से हम मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट देन देयर इज़ दिस जेंटल ऑपोजिट कॉल्ड अ ग्लिमर। जी हाँ, ग्लिमर्स क्या होते हैं पता है? ये वो छोटे छोटे ऑलमोस्ट इनविजिबल मोमेंट्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमारी लाइफ में खुशी लाते हैं, लाइक सुबह की एक गर्म चाय की सिप, कोई फेवरेट सॉन्ग सही वक्त पर बज जाना, या फिर किसी स्ट्रेंजर की एक प्यारी सी स्माइल, या वो एहसास जब एक पल के लिए सब कुछ ठीक लगने लगता है। यस, दे डोंट डिमांड अटेंशन, दे डोंट कम लाउडली, बस चुपचाप आते हैं और सिर्फ नोटिस किए जाने का इंतज़ार करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जितना आप अपने माइंड को ग्लिमर्स नोटिस करने के लिए ट्रेन करते हो ना, उतना ही ज़्यादा ये आपको दिखने लगते हैं। जैसे धीरे धीरे दिल सीख जाता है कि फोकस सिर्फ दर्द पर नहीं बल्कि उन चीज़ों पर भी हो सकता है जो हमें हील करती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ट्रिगर्स को इग्नोर कर दो, क्योंकि वो भी रियल है, इग्नोर नहीं हो पाते कभी कभी, है ना। बट मे बी वी डोंट हैव टू लेट देम टेक ऑल द स्पेस। शायद हम हर दिन ग्लिमर्स कलेक्ट करना शुरू कर सकते हैं, जैसे छोटी छोटी रोशनी के टुकड़े हो जो हमें याद दिलाते हैं दैट लाइफ इज़न्ट ऑलवेज अबाउट बिग हैप्पी मोमेंट्स। कभी कभी ये छोटे क्वाइट ग्लिमर्स ही होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम ठीक हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी भी जिंदगी में बहुत सी खूबसूरती बाकी है। सो टुडे जस्ट पॉज फॉर अ मोमेंट और खुद से पूछो, व्हाट वाज माय ग्लिमर टुडे? और अगर अभी तक नहीं मिला तो कोई बात नहीं, शायद वो अगले पल में हो या अगली स्माइल में, बिकॉज समटाइम्स हीलिंग लाउड नहीं होती, कभी कभी वो बहुत सॉफ्टली आती है एज अ ग्लिमर। तो जी हाँ, उम्मीद है कि आपको इस वर्ड के बारे में पता चल गया होगा। खैर, अब बातों से परे चलते हैं कुछ खूबसूरत सॉन्ग्स की तरफ। तो सुनते रहिए, ये है FM रेनबो 101.9 और आपको ले चलने वाली हूँ एक बेहतरीन नगमे की तरफ। सुनते रहिए

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब। दोस्तों कहते हैं ना, जिंदगी में अगर कोई एहसास सबसे खूबसूरत होता है तो वो है प्यार। एक ऐसा एहसास जो कभी मुस्कुराहट बनकर चेहरे पर आ जाता है तो कभी किसी की याद बनकर दिल को हल्का सा छू जाता है। कभी किसी का कहना, खाना खाया पूछ लेना भी प्यार लगता है। तो कभी बिना कुछ कहे किसी का समझ जाना प्यार लगता है। प्यार ज़रूरी नहीं हमेशा लफ्ज़ों में कहा जाए, कभी कभी खामोशियों में भी उसकी

आवाज होती है। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके लिए प्यार का मतलब क्या है? क्या कोई ऐसा पल है जो आज भी याद आते ही दिल को हल्का सा मुस्कुरा देता हो? अपनी बातें हम तक जरूर पहुंचाइए, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक खूबसूरत सा नगमा जो दिल की इन्हीं फीलिंग्स को बयां करता है।

दोपहर के 1:03 दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ। और जी हाँ, 1:03 हो चुके हैं, यानी कि आपको पता ही होगा कि हेलो रेनबो का सफ़र ऑलरेडी जारी हो चुका है। जी हाँ, एंड यहाँ पर होने वाली हैं कुछ बातें, और बातें करने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स है वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारे फ़ोन नंबर्स है 0402323-0030, 0402323-4821 और 0402970-4715। और आपके साथ हूँ मैं, निशा। तो आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मेरे साथ हैं आज शमा भी। तो जी हाँ, आज हम दोनों आपसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं। और सबसे पहले तो बता दूं कि आज जो बातें होने वाली हैं वो एक

0: तो आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मेरे साथ हैं आरजे शमा भी। तो जी हाँ, आज हम दोनों आपसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं। और सबसे पहले तो बता दूं कि आज जो बातें होने वाली हैं वो एक बहुत ही सिंपल से टॉपिक पर होने वाली हैं। वेल दोस्तों, आज की फास्ट मूविंग लाइफ में जहाँ हर कोई डेडलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बिजी स्केड्यूल्स में उलझा हुआ है, कभी कभी ना किसी के लिए की गई छोटी सी काइंडनेस भी उनका पूरा दिन बेटर बना देती है ना। तो उसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, दोज स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जो आप अपनी बिजी लाइफ में से भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर दूसरों के लिए कर सकते हैं। एंड यस, आरजे शमा भी यहाँ पर मेरे साथ है और वो भी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। तो जी हाँ आरजे शमा, आप क्या कहना चाहेंगी हमारे लिसनर्स से?
1: दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनकी याद दिल में बहुत गहरी छाप छोड़ जाती है। कभी किसी का मुश्किल वक्त में साथ देना और कभी बिना कहे किसी की परेशानी समझ जाना, या फिर बस एक छोटी सी मुस्कान देकर किसी का दिन बेहतर बना देना। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहाँ हर कोई अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है, वहाँ अगर कोई छोटी सी काइंडनेस दिखा दे तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। तो मैं आज अपने सारे लवली लिसनर से एक बहुत प्यारा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा छोटा सा काइंडनेस का पल था जो या तो किसी ने आपके लिए किया हो या फिर आपने किसी और के लिए किया हो, और जिसकी याद आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती हो? हो सकता है किसी ने मुश्किल वक्त में आपका हाथ थामा हो जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, या फिर शायद आपने किसी अनजान इंसान की मदद की हो और बिना जाने ही उसकी मुस्कान की वजह बन गए हो। क्योंकि सच कहूं, अच्छाई दिखाने के लिए हमेशा बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती मेरे दोस्त। कभी कभी बस थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा सब्र और दिल में दूसरे के लिए नरमी होना ही काफी होता है।
0: तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना आरजे शमा को, दो स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जो आई थिंक कभी आपने किसी के लिए किया है और जब किसी ने आपके लिए किया हो। एंड हमसे जुड़ने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स है वो हैं 0402323300, 0402323481 और 0402970415। तो आइए चलिए जुड़ते हैं हमारे पहले कॉलर के साथ। हेलो रेनबो।
2: हेलो, गुड आफ्टरनून आदाब मैडम जी।
0: गुड आफ्टरनून आदाब शेर खान जी, कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह का करम है, और शमा जी को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम,
0: हाँ जी।
2: और
0: तो
2: अल्लाह की
0: शमा
2: दुआ है
0: जी,
2: आप सभी को खुश रखे,
0: आपको भी
2: आबाद रखे,
0: सलाम
2: सेहत
0: बोल
2: मंद
0: रहे हैं शेर
2: रखे।
0: खान जी।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: जी, तो
2: जी
0: सुना
2: शमा
0: आपने
2: जी,
0: आरजे शमा जी को, और बताइए कि वो कौन से एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैं जो कभी किसी ने आपके लिए किया या फिर आपने किसी के लिए किया?
2: देखिए निशा जी, जिंदगी में ऐसे तो बहुत सारे पल आए हैं और आ रहे भी हैं और आते भी रहेंगे, क्योंकि इन पलों से जुड़े रहना ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है।
0: जी
2: बड़े बड़े चीजों का इंतजार करेंगे और बड़े बड़े मतलब नाशुक्रा पला करेंगे तो फिर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ये छोटे छोटे पल ऐसे बहुत सारे आए, और वो कौन सा पल बोल के गिनाए हम, ऐसे पल हुए हैं किसी ने हमको प्यार से एक छोटी सी बात भी कर दिया, हमारे साथ अच्छे अखलाक से अच्छी तरह से बात भी कर दिया, तो वो भी एक सारी दुनिया की दौलत से ज्यादा हमारे लिए अजीम पल रहता। वो भी
0: जी जी बिल्कुल।
2: काम तो बहुत कुछ है हमारे लिए भी, बहुत से जनों ने किए और हमने भी किए हैं, और हम इस नियत से करते रहते हैं कि हमको उनको बस अपना अमाल अच्छे कर्म समझ के करते रहना है, बस उसको भूल जाना है हमको, और किसी मतलब के, किसी लालच के, स्वार्थ के लिए नहीं करना है, बस सबकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना है,
0: जी
2: सबके
0: जी
2: सुकून में अपना सुकून तलाश करना है, इसलिए ये अमाल करना है और करते रहना है, बस ये नहीं सोचना हमने किसी को खुश किया या किस लिए किया या क्यों किया,
0: जी
2: ये
0: जी
2: बस
0: बिल्कुल।
2: अपने अमाल करते रहेंगे तो ये सब कुछ ठीक ठाक होता रहेगा, बस इसके लिए किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी।
0: जी जी बिल्कुल। ओके, चलिए, थैंक यू
2: बहुत
0: सो
2: सारे
0: मच।
2: खुशी के पल आते भी हैं
0: हाँ
2: हमारे लिए
0: हाँ
2: भी, बहुत से
0: जी
2: जनों ने किया और करके मुंह पे लाना ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा,
0: जी
2: मैंने
0: जी
2: इसके लिए
0: बिल्कुल
2: वो
0: बिल्कुल।
2: किया, उन्हें ऐसा किया, उन्हें ऐसा करा,
0: बिल्कुल
2: मैंने
0: बिल्कुल
2: ऐसा करा,
0: सही बात
2: बोलना
0: है।
2: नहीं है, याद नहीं
0: हाँ
2: रखना है, इसको अमल समझ के
0: ओके
2: करते रहना है
0: जी
2: हमको,
0: जी जी
2: बस कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करना है हमको, अमल

0: जी, ओके, थैंक यू सो मच.
1: शुक्रिया निशा जी, शमा जी, अल्लाह हाफिज़.
0: जी, थैंक यू सो मच. तो जी हाँ, ये थे शेर खान जी. और जैसा कि कहते हैं ना, कि अगर आपने किसी का कुछ भला किया और फिर उस भले को करके उसको जता दिया, तो फिर वो भला भला नहीं हो रह जाता है ना. तो आप दूसरे का भला कीजिए, लेकिन उस चीज़ को जताना हमेशा ज़रूरी नहीं है. और वैसे यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वो स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई आपके लिए दिखा जाता है, या फिर आप किसी के लिए कुछ कर जाते हैं, कुछ अच्छा सा, है ना, एक छोटी सी एक्ट ऑफ काइंडनेस. तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो फिर से एक बार बताना चाहूँगी. 0402323 0030, 0402323 4821, और 0402970471. तो जी हाँ, हम अपने लिसनर्स के साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटे से संदेश के बाद. सुनते रहिए, ये है आकाशवाणी हैदराबाद, FM रेनबो 101.9.
2: యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు అందిస్తున్నారు అద్భుతమైన 444 రోజుల డిపాజిట్ పథకం.
3: ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటుతో వృద్ధులకు 7.10% మరియు వయో వృద్ధులకు అదనంగా 0.25% వడ్డీ రేటు.
2: మరిన్ని వివరాలకు మీ దగ్గరలో ఉన్న యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్రాంచ్ ను సంప్రదించండి.
0: दोपहर के 1:10 दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद, FM रेनबो 101.9 के साथ. जारी है हेलो रेनबो का सफ़र. स्टूडियो की घड़ी में 1:10. जी हाँ, काफ़ी सारा वक्त जो है हमारे पास इस सेगमेंट में, और काफ़ी सारे कॉलर्स भी हमसे बात करना चाहते हैं, तो उनसे एक एक कर कर जुड़ेंगे. एंड आई थिंक इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बेवजह अच्छा काम करते रहते हैं ना, और उन्हीं में से आई थिंक कुछ हमारे कॉलर्स भी हैं जिनके पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए. तो उन्हीं से जुड़ेंगे, एक और कॉलर की तरफ चलते हैं. आइए देखते हैं कौन है वो. हेलो,
4: हेलो,
0: हरिओम.
4: मैं विलास पेनुरकर नल्लाकुंटा भाग्यनगर से बोल रहा हूँ.
0: जी हाँ विलास जी, कैसे हैं आप?
4: मैं बहुत अच्छा हूँ.
0: और बताइए.
4: आज के विषय पर बोलना चाहूंगा कि हम अगर किसी व्यक्ति को मदद करते हैं या दान
0: हाँ जी.
4: देते हैं, तो ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दाएं हाथ से दिया हुआ दान बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए.
0: वाह, क्या बात है.
4: अर्थ ये है कि हम दान अगर से करते हैं तो उसके बारे में किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है. अगर से आप किसी से कहते हो तो वो दान, उस दान से जो पुण्य आपको मिला है उसमें कटौती होगी.
0: बिल्कुल.
4: तो लेकिन अभी विषय ही ऐसा है कि आपने कहा है कि आपने ऐसा कुछ कार्य किया हो तो
0: हाँ,
4: बताइए.
0: हाँ जी हाँ.
4: तो इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ आपको कि मेरे पास में एक लकड़ी का पलंग था
0: जी, जी.
4: जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे
0: ओके,
4: थे. और मैंने विचार किया, मेरे एक मित्र थे नील कुमार उनका नाम
0: जी जी.
4: तो मैंने विचार किया कि भाई उनके पास में उनकी परिस्थिति उतनी ठीक नहीं थी, तो मैं ये पलंग उनको दे दूंगा तो उनको ये अच्छा होगा, उपयोगी होगा. मैंने उनसे संपर्क किया, उनसे कहा कि भाई मेरे पास में ये पलंग है, आपको आवश्यकता हो तो आप ले जाइए. तो वो बोले ठीक है, मैं ले जाता हूँ. वो आए और विशेष बात ये है कि उस पलंग को वो साइकिल के ऊपर लेकर के अस्तापुर गए.
0: ओके.
4: और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि आपका पलंग इतना उपयोगी है क्योंकि मेरी माँ पहले नीचे सोया करती थी.
0: हाँ जी.
4: और उठने में उसे दिक्कत होती थी. जब से आपका पलंग लेकर गया हूँ मेरी माँ उस पलंग पर सोती है और उठने में अब उसको दिक्कत नहीं होती. दिन में कम से कम 5 बार तो वो कहती है कि भैया तुमने ये पलंग ला कर दिया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत
0: ओके,
4: अच्छा.
0: जी तो चलिए, बहुत अच्छा काम किया आपने. हाँ जी
4: हाँ जी
0: हाँ जी. तो बहुत अच्छा काम किया आपने, एंड कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
4: और एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे पास में पुरानी साइकिल थी जो मेरे लड़कियों के लिए मैं लेकर आया था. तो लड़कियां अब बड़ी हो गई है, अब साइकिल नहीं चलाती थी. तो मैंने विचार किया कि मैं साइकिल को अगर से बेच दूंगा तो 100-150 रुपए मुझे मिलेंगे, लेकिन मेरा जो रक्षक है नीचे काम करने वाला जिसको हम वॉचमैन कहते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे थे. मैंने कहा रक्षक को कि भैया ये साइकिल तुम तुम्हारे बच्चों के लिए उपयोग में लाइए. जब मैं देखता था कि वो बच्चे बड़े प्यार से उस साइकिल

0: को चला रहे हैं तो मुझे इतना समाधान मिलता था कि चलो भाई कुछ हम किसी के लिए कर सके। तो ये दो बातें जो है ये अपने को बहुत समाधान देती हैं और उस प्रकार के समाधान को प्राप्त करने के लिए हमसे जितना भी बनता है हमको अन्य लोगों की मदद करना बहुत आवश्यक हो जाता है।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है और कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जानकर बहुत अच्छा लगा।
0: आपने मुझे समय दिया।
1: ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। तो जी हाँ, ये थे विलास जी और इनका एक बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने कि जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती हैं, ऑब्वियसली जो हमारे ज़रूरत का नहीं है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के ज़रूरत का ना हो। तो कभी कभी हमारे जो ज़रूरत में नहीं है चीज़ें वो हमें दूसरों को दे देना चाहिए जिनको उनकी ज़रूरत है, और ऐसे ही हम वो कर सकते हैं जो ज़रूरी है। खैर फ़िलहाल तो ज़रूरी ये है कि मैं और एक लिसनर से जुड़ूं, उनसे भी मैं जुड़ना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ लिसनर्स यहाँ व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं, उनका भी मैसेज एक बार मैं देखना चाहूँगी। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं इमरान जी जो लिखते हैं गुड आफ्टरनून, तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, और शमा के लिए भी लिखा है कि बेस्ट ऑफ लक। तो जी हाँ, थैंक यू सो मच। एंड देन हमारे साथ यहाँ पर सरवर अली जी हैं जो लिखते हैं गुड आफ्टरनून, और यहाँ पर उन्होंने कुछ पुराने सॉन्ग के कैसेट्स की फ़ोटो भेज रखी है जहाँ पर डुप्लीकेट है, परदेस है, गुप्त है। तो चलिए बहुत अच्छा लगता है कि आपने इन सभी पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखा हुआ है। एंड देन यहाँ पर हैं जयदीप, एंड ये हैं जयदीप ज्ञानमूर्ति विजय शेखर, इनका भी जो मैसेज है काफ़ी लंबा चौड़ा है। एंड ये लिखते हैं कि ओ माय गॉड यू स्पोक अबाउट एमजे, दैट वाज सो ब्यूटीफुल एंड आई वांट टू से आई एम अ बिग फैन ऑफ एमजे, ही इज़ वन ऑफ माय आर्ट आई वांट टू शो यू व्हिच आई मेड व्हेन ही डाइड इन 2009। तो कैसा लगा बताइए। तो जी हाँ, काफ़ी सुंदर सी स्केच इन्होंने माइकल जैक्सन की भेजी है और देख कर काफ़ी अच्छा लगा। एंड यस, ये कहते हैं कि अगर हो सके तो प्लीज़ एक और गाना बजा सकते हैं आप माइकल जैक्सन का वी आर द वर्ल्ड, जो कि इनका फेवरेट है। तो जी हाँ, मैं ज़रूर क्वेश्चन करूँगी। एंड हम मुझसे भी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है कि नहीं माइकल जैक्सन का। तो जी हाँ, मेरा बिल्कुल एक फेवरेट सॉन्ग है उनका, और वो है हील द वर्ल्ड, जो मैंने आज प्ले भी किया। एंड ही सेइंग कि जो ये गाना रिक्वेस्ट करते हैं वी आर द वर्ल्ड, इसमें 40 से ज़्यादा लेजेंडरी आर्टिस्ट एक साथ इस सॉन्ग को रिकॉर्ड कर रहे थे, विच इज़ समथिंग ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल एट दैट टाइम। जी हाँ, 40 लेजेंडरी आर्टिस्ट एक साथ एक गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हो। सो इट यूनाइटेड पॉप, रॉक, सोल एंड R&B आर्टिस्ट डिस्पाइट राइवलरीज एंड फेम। एंड ये लिखते हैं कि इस गाने का एक सिंपल सा मैसेज था कि ह्यूमैनिटी इज़ वन फैमिली। तो क्या बात है। एंड यस, जी हाँ, माइकल जैक्सन बहुत ही ग्रेट डांसर, सिंगर, कोरियोग्राफर जो कह लीजिए उन्हें, और एक खास करके बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो जी हाँ, ये सॉन्ग मैं ज़रूर प्ले करूँगी आपके लिए। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इसी सॉन्ग की तरफ चलेंगे और उसके बाद हम जुड़ेंगे अपने कुछ और लिसनर्स के साथ। एंड यस, यहाँ पर कुछ और मैसेजेस हैं, उन्हें भी मैं शामिल करूँगी। जैसे यहाँ पर अशोक जी हैं हमारे साथ, तो इनका मैसेज भी मैं थोड़ी देर में शामिल करूँगी। एंड यस, सबसे पहले चलते हैं इस सॉन्ग की तरफ, वी आर द वर्ल्ड बाय माइकल जैक्सन।

0: वेलकम बैक। और ये है हैदराबाद आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM और आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो। तो दोस्तों, काइंडनेस की बात हो रही थी और बहुत सारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, तो अभी जो कॉलर हैं उनसे हम बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो
0: हेलो सर।
1: हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। अमा
0: हाँ, गुड आफ्टरनून।
1: मैं रमनैया। मैं हेलो
0: हाँ सर।
1: रमन,
0: हाँ
1: सुना था है माँ?
0: हाँ हाँ सुन रही हूँ। हाँ सर, बोलिए।
1: तुम्हारा नाम क्या माँ?
0: हाँ जी, मेरा नाम शमा है। हाँ
1: हाँ
0: हाँ मेरा नाम शमा है, बोलिए सर।
1: हाँ क्या नहीं माँ, दान दिया तो किसे भी दिया तो तेलुगु में बोलने का।
0: आप अगर इसमें तेलुगु में
1: हाँ बोल
0: बोलना
1: तू, बोल
0: चाहते
1: तू,
0: हैं तो
1: हिंदी
0: बोलिए।
1: में तो बोल तू, हिंदी में तो बोल तू।
0: ठीक है सर,
1: दान
0: ठीक है।
1: किसी से दिया तो उनको उपयोग पड़ता है, नहीं वो देख ले को देना। वो हमें दिया तो पैसे किसी किसी के कोई बैड है, हाइब्रिड को खर्च है तो हम लोग भी उपयोग नहीं, उनको उपयोग नहीं।
0: हाँ सर।
1: अच्छा क्या हो तो हम दिया सो पैसे क्या है तो पैसा है नहीं क्या तो हेल्प क्या है तो भी उनको उपयोग पड़ना, उपयोग पड़े तो बिल्कुल उसी अपना करता है कर को मैंने देखना नहीं। हाँ
0: बहुत अच्छा।
1: उसके वास्ते मैं बोलने क्या तो दिया तो भूल जाना, किसे दिया तो भी हमें दिए उन्होंने उपयोग पड़ा बस अगर को दो मैं बिल्कुल उनसे मैंने क्या तो देता है अगर को समझना नहीं।
0: बहुत अच्छी, आपकी सोच तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है सर।
1: अच्छा
0: और
1: माँ, अच्छा
0: आपको लाइन पर लेकर बहुत अच्छा लगा सर। दूसरे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनको लेते हैं लाइन पर।
1: हाँ ठीक
0: तब तक के
1: माँ,
0: लिए
1: बहुत
0: बहुत बहुत
1: अच्छा,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद माँ।
0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ सर,
1: मैडम, गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून, कौन बोल रहा है?
1: जी मैं हसर अदील बात कर रहा हूँ
0: हाँ हाँ बोलिए।
1: मैडम, खैरियत से है?
0: बिल्कुल खैरियत से, अपना बताइए। हाँ
1: जी, बिल्कुल ठीक है। ये ऑन एयर है ना?
0: हाँ आप ऑन एयर हैं।
1: जी मैडम, मेरा एक अचानक मेरा एक मुश्किल का वक्त आया था।
0: जी।
1: वो टाइम पे मैं मेरे फ्रेंड को बोला कि ऐसा ऐसा परेशानी हुई, तो वो मेरे लिए जितनी परेशानी थी उनके लिए वो चीज़ उतनी आसान थी। तो वो बोले ठीक है मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो वो मेरी हेल्प करे। एंड
0: अच्छा।
1: बाद में उनका एक मुश्किल का वक्त आया, तो जब मैं बोला कि मेरे लिए बहुत आसान सी बात है, ये कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, तो मैं उनकी हेल्प करा। तो
0: अरे वाह।
1: देखिए कैसा होता है कि कुछ कुछ मुश्किलें हम अपने लिए बहुत मुश्किल से, लेकिन आगे वाले के लिए बहुत आसान सी चीज़ होती है।
0: जी
1: तो वो
0: जी
1: बहुत सिंपल से मेरे को वो उसका सोल्यूशन बताया, वो प्रॉब्लम खत्म हो गया, मैं भी उनको बताया वो खत्म हो गया। तो मैं और मेरे फ्रेंड दोनों हम एक दूसरे की हेल्प करें मैडम, एंड स्टिल द फ्रेंडशिप इज गोइंग ऑन,
0: बहुत अच्छा
1: अभी
0: सर।
1: तक भी चल रही है।
0: अरे वाह।
1: जी, आप शमा मैडम बात कर रहे हैं ना?
0: जी हाँ जी हाँ, मैं शमा बोल रही हूँ।
1: जी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है मैडम,
0: ओके, एक्चुअली अभी ठीक आ रही है।
1: अभी थोड़ा बड़ी मैडम।
0: ओके ओके सर, आपसे
1: जी
0: जुड़ने
1: आप,
0: के लिए बहुत अच्छा लगा।
1: जी
0: और
1: जी
0: बहुत सारे कॉलर हैं, उनसे बात करनी होगी हमें। तब तक के लिए धन्यवाद।
1: ओके
0: ठीक है।
1: ओके ओके।
0: ओके।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो 101.9 और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे शमा। तो हमारे साथ जुड़े हैं एक नए कॉलर, चलिए लेते हैं उनको लाइन पे। हेलो।
1: नमस्कार जी, मशा जी।
0: हाँ, नमस्कार, बताइए।
1: मैं बोले कि प्रभाकर बात कर रहा हूँ, ऑन एयर मैडम।
0: हाँ, आप ऑन एयर हैं प्रभाकर जी, बताइए।
1: तो हम अभी बेंगलुरु से बात कर रही है,
0: अच्छा,
1: तो हैदराबाद में है। सो टाइम पे
0: हाँ,
1: हमारा टीवी थोड़ा पुराना हो गया तो नया ले लिए। वो भेजे तो क्या आता, पैसे ज़्यादा नहीं आती।
0: सर एक्चुअली क्या है ना कि हम अभी काइंडनेस पे बात कर रहे हैं, तो
1: हाँ
0: ये
1: वही है
0: चीजें।
1: मैं आ रहा हूँ। वो दूसरों को
0: हाँ,
1: दिए थे
0: ओके ओके
1: यूज करने का,
0: जी,
1: दिए तो वो आदमी क्या करे बोल। तो असल मैं ओरिजिनल बात करूँ, पियोट वाले हैं, भेज दिया उन्हें।
0: अच्छा,
1: मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, क्या है ये ऐसा काम करी इन्हें बोल के। और एक कूलर था,
0: अच्छा सर,
1: दूसरा आदमी को दिया, उन्हें यूज कर ले रही।
0: अच्छा
1: अच्छा से यूज कर, मैं चेकिंग कभी कभी चेकिंग भी करता हूँ उसके ऊपर, उन्हें रखा है नहीं तो दे दिए, भेज दिया बोल के रखे उन्हें। अच्छा
0: हाँ,
1: ये गर्मी के मौसम पे अच्छा ठंडा हो रहा है साहब बोल के बहुत याद करती है। तो मेरा मतलब क्या है, तो आदमी को देख के भी देना पड़ता अपना चीज।
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: हाँ तो जब यूज करती यूज उनको भी होता, अपन को भी सेटिस्फाइड होता ना यूज कर रही बोल के।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: हाँ अगर उन्हें दूसरा भेज दिया है नहीं तो कुछ खराब कर दिए बोल, तो हमारे को थोड़ा दिल में नाराज दिखती है।
0: अच्छा,
1: इतना साल से उनको हम पोषणा करी है, हाँ संभाल को रखा है, एकदम उन्हें हमारा नाम गलत कर दिया बोल के
0: हाँ
1: गुस्से में
0: सर,
1: आता।
0: देखिए प्रभाकर सर, ये तो अच्छी बात है कि आपसे मुझे जुड़ना अच्छा लगा, और बात के लिए आपका शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे कॉलर अभी लाइन पर हैं। हम फिर आपसे
1: थैंक यू
0: बात
1: थैंक यू
0: करेंगे।
1: थैंक
0: थैंक यू
1: यू
0: सर,
1: शमा जी, थैंक यू।
0: थैंक यू, थैंक यू।

स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:31। दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं हेलो रेनबो के साथ। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी। फ़ोन नंबर्स है 0402323000, 0402323482 और 0402970475। तो जी हाँ, ये तीन नंबर्स हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आज हमसे जुड़कर जो बातें करनी है उनके लिए एक टॉपिक है, वो टॉपिक है स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। जी हाँ, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो जो छोटी छोटी अच्छी चीज़ें आप दूसरों के लिए करते हैं या दूसरे आपके लिए करते हैं, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो जी हाँ, उनके बारे में और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सा सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म कश्मीर की कली सुनते रहिए।

0: www.nyayvibhag.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 के साथ और फिलहाल जारी है हेलो रेनबो का सफ़र। एंड यस, यहाँ पर बहुत सारे लिसनर्स हमसे जुड़े और कुछ और हैं जो अभी भी हमसे जुड़ना चाहते हैं। एंड कुछ हमारे लिसनर्स हैं यहाँ पर जो हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अशोक जी का मैसेज है। अशोक जी फ्रॉम सुल्तानशाही लिखते हैं, नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार। और इनका एक खूबसूरत सा मैसेज है कि ये दुनिया बड़ी बेवफा है समझना, कहीं दिल लगाने की कोशिश ना करना। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी एक सफ़र है समझना, कहीं ठहर जाने की कोशिश ना करना। वाह, क्या बात है। और सच पूछिए तो जी हाँ, ज़िंदगी चलते रहने का ही नाम है। तो रुक सकते हैं, है ना, कभी कभी हम थक जाते हैं तो रुकना ज़रूरी है, लेकिन रुक कर फिर से चलने का ही नाम ज़िंदगी है, आगे बढ़ते रहने का नाम ज़िंदगी है। तो जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमारे साथ अश्विन जी हैं फ्रॉम कोठी कुशल मार्केट, जो लिखते हैं, जय श्री कृष्णा निशा जी और आर्य शर्मा जी। तो आपको भी जय श्री कृष्णा और सभी सुनने वालों को, एंड आप सबका स्वागत है। ये मैसेज पढ़ना चाहते हैं। तो जी हाँ, एक मैसेज इन्होंने भेजा है कि खुश हूँ, ज़िंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूँ। काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ, आज पनीर नहीं दाल में ही खुश हूँ, आज गाड़ी नहीं पैदल ही खुश हूँ, आज कोई नाराज़ है उसके इस अंदाज़ से ही खुश हूँ, जिसको देख नहीं सकता उसकी आवाज़ से ही खुश हूँ, जिसको पा नहीं सकता उसको सोच कर ही खुश हूँ, बीता हुआ कल जा चुका है उसकी मीठी याद में ही खुश हूँ, आने वाले कल का पता नहीं इंतज़ार में ही खुश हूँ, हंसता हुआ बीत रहा है पल आज मैं ही खुश हूँ, ज़िंदगी है छोटी हर पल में खुश हूँ, अगर दिल को छुआ तो जवाब देना वरना बिना जवाब के भी खुश हूँ। वाह, क्या बात है। जी हाँ, बहुत कुछ कह रहा है ये मैसेज हमारी ज़िंदगी के बारे में, हमारे बारे में, रिश्तों के बारे में, प्यार के बारे में और न जाने किन किन चीज़ों के बारे में। बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज। एंड यस, बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज के लिए अश्विन जी। एंड फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलेंगे। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं कुछ सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस की। तो जी हाँ, हमारे जो नेक्स्ट कॉलर है हमसे जुड़ने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं कौन है वो। हेलो।
2: हेलो हेलो।
1: हाँ जी, हेलो रेनबो।
2: हाँ मैम, मैं आरटीसी क्रॉस रोड से बोल रहा हूँ, शमा मैम से बात हो रही है।
1: हाँ जी, शमा जी यहाँ पर हमारे साथ है।
3: हाँ हेलो
2: मैम। हाँ मैम, शमा मैम, गुड आफ्टरनून। मैं रोड से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अजहर। और आप लोग का ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा
3: जी,
2: और हम लोग हमेशा हर थर्सडे वेट करते हैं आपके इस प्रोग्राम का। और आपने जो आज बातें बताई वाटर सेविंग के बारे में, फिर हमारे एक जो हमारे आंध्र प्रदेश के सीतारमन अल्लूराम जी के बारे में बताया, वो काफी जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं थे, तो उनके बारे में पता चला कि वो कितने अंग्रेजों से किस तरह से लड़ाई की और किस तरह से उनका योगदान रहा हमारे स्वतंत्रता के इसमें अभियान में, तो ये सुन के काफी अच्छा लगा
3: जी। जी शुक्रिया।
2: और मैं, आपने जैसे पूछा कि जिंदगी में कौन से वैसे पल हैं जहाँ पर आपने खुशी हुई किसी को हेल्प करके, तो मैडम अभी हाल में हमारे इलाके के एक गरीब परिवार को, जिसके उनके पास सब परिवार में उनके किसी की भी परिवार में आंखें नहीं है, तो
3: अच्छा।
2: उनका हम लोगों ने जाके, हम मेरी वाइफ ने जाके मदद की, तो उनसे हमको बहुत अच्छा लगा अंदर से। और
3: बहुत अच्छा।
2: तो हमें लगता है कि ऐसे अभियान सरकारी योजना के तहत होने चाहिए, जो हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो हम पे डिपेंडेंट हैं, जो सोसाइटी के लोगों पे डिपेंडेंट है, तो उनको सरकार की तरफ से भी हेल्प आनी चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी को गुजार सके।
3: जी जी, आपकी सोच
2: आपकी
3: बहुत अच्छी है।
2: बहुत अच्छी लगी मैम, और हम लोग हमेशा वेट करते हैं आपके प्रोग्राम का।
3: जी जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।
2: थैंक यू मैम।
1: तो जी हाँ, हमारे एक लिसनर थे ये, और काफ़ी अच्छी चीज़ की इन्होंने कि इनके इलाके के जो एक इंसान थे, ब्लाइंड थे, और उनकी हेल्प की इन्होंने, तो जो बहुत अच्छी चीज़ है. एंड यस डियर लिसनर्स, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कुछ स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस की, जो आपके डेली लाइफ में आप कर सकते हैं और दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं.

0: है।
1: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law

0: जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को जेन्युइनली स्माइल दे देना है ना, हम जब किसी को देखते हैं तो ऑब्वियसली स्माइल देते ही हैं, लेकिन वो स्माइल जेन्युइन है कि नहीं वो जिसको स्माइल देते हैं वो पता लगा लेता है ना। तो यहाँ पर अगर आप किसी को स्माइल दे भी रहे हैं ना तो ध्यान रखिएगा कि वो जेन्युइन स्माइल है, और वो भी एक एक्ट हो सकती है काइंडनेस की। एंड यस, आजकल गर्मी बहुत है तो कोई टायर्ड पर्सन है तो उसको इस गर्मी में वाटर ऑफर करना, ये भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस ही है। एंड कभी कभार क्या होता है ना कि घर पर दिन भर सोफे पर बैठे बैठे बोर हो रहे, फिर भी पेरेंट्स की हेल्प नहीं की जाती है ना, तो कभी कभी पेरेंट्स के बिना बोले ही उनकी मदद की जा सकती है, ये भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है। एंड एक जो बहुत ही प्यारी सी बात ये भी होती है कि आप किसी को पेशेंटली सुन लें, है ना। बहुत लोग बैठे रहते हैं अपने दिल की बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपना दिल का हाल बयां करने के लिए, बट कभी कभी उनके पास कोई होता ही नहीं है उनको सुनने के लिए। तो कभी ना किसी का भला करना है तो बस चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुन लीजिए, है ना। तो वो भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस हो जाती है, कहीं कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, बस ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप कर लें तो आई थिंक किसी का भला हो जाए। खैर चलिए, हमारे कुछ लिसनर्स हैं उनसे भी हम जुड़ेंगे एंड देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन होते हैं।
1: हेलो।
2: राधे राधे
1: हाँ सर बोलिए।
2: राधे राधे जी, कैसे
1: राधे राधे सर,
2: हैं आप?
1: बहुत अच्छे।
2: वेलकम, उससे पहले तो वेलकम टू एफएम रेनबो।
1: हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम टू रेनबो सर। हाँ बताइए।
2: निशा निशा जी को राधे राधे।
0: जी मुरली जी, मैं भी यहाँ पे हूँ तो राधे राधे।
2: थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं निशा जी आप?
0: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए मुरली जी।
2: मैं तो एक्सेलेंट हूँ। और आपको तो पता है निशा जी, मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ। आप यकीन नहीं करते, मैं दिन में कम से कम 10 या 20 भगवानों को मैं दर्शन करता हूँ
0: ओके।
2: काइंडली। क्यों बोलो तो, कुछ भी जरूरत है तो एक इंसान का मेरा जरूरत पड़ता। अगर बैंक में गया कुछ वो ओचर भरने के लिए मेरा काम आता, उन्होंने रोड क्रॉस करने के लिए काम आते, बस चढ़ने में काम आते, रोड क्रॉस करने में काम आते मेरे को। कम से कम मैं दिन में हर वक्त हर समय मैं भगवान को दर्शन करता रहता हूँ। और
0: अच्छा जी।
2: एवरी डे मैं क्लियरली खुला बोल रहा हूँ, काइंडली ये समाज जो है, ये सोसाइटी जो है, भगवान से भरा हुआ है,
0: वाह
2: यही
0: क्या
2: कहना चाह
0: बात
2: रहा था
0: है।
2: बस।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा जानकर
2: थैंक यू,
0: कि,
2: हैव ए ग्रेट डे बोथ ऑफ यू।
0: थैंक यू सो
2: थैंक
0: मच,
2: यू,
0: थैंक
2: थैंक
0: यू
2: यू
0: सर।
2: सर।
0: चलिए आपको भी आपका दिन मंगलमय हो। एंड जी हाँ, ये थे मुरली जी, और काफ़ी जानकर अच्छा लगा ना कि बहुत सारे अच्छे लोग भी अभी भी हैं, है ना। वैसे कुछ थोड़ी बहुत खराबी भी है लेकिन उसको हम सुधार सकते हैं अपने एक्ट से। जी हाँ, अगर हम अपना थोड़ा सा व्यवहार बदल ले किसी के प्रति तो चेंजेस आ सकते हैं। और कहते हैं ना कि अगर आपको दुनिया में कोई चेंज देखना है तो वो चेंज सबसे पहले अपने अंदर लाना होता है। तो थोड़ा बहुत बदलाव करें और फिर देखें कि मतलब दुनिया कितनी खूबसूरत बन जाती है और खूबसूरत लोगों से भर जाती है। वैसे अभी भी बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हैं, जैसे मुरली जी ने कहा कि दिन भर में 20 बार भगवान के दर्शन होते हैं, और भगवान से उनका मतलब लोग ही थे जो उनकी हर कदम पर हेल्प करते। सो सुनकर काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा। एंड यस, हमारे कुछ और लिसनर्स हैं उनसे भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संदेश सुनते रहिए।
3: తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత రాష్ట్రం మొదటిసారిగా జనాభా లెక్కింపునకు సిద్ధమవుతోంది. మొదటి దశ జనగణన ఏప్రిల్ 26 నుంచి జూన్ 9 వరకు, మే 11 నుంచి జూన్ 9 వరకు జరిగే హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్ ఇంటింటి సర్వేలో ఎనుమరేటర్ అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు మీ కుటుంబ వివరాలు, మీ ఇండ్ల సమాచారం ఇవ్వటం పౌరులుగా మన బాధ్యత. అలాగే స్వీయ గణన ఐడిని కూడా ఎనుమరేటర్ కు అందజేయండి. డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ తెలంగాణ శ్రీమతి భారతి హోళీకేరి గారు ఏమంటున్నారంటే,
4: మీ వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయి. మన జనగణన మన వికాస, మన జనగణన మన అభివృద్ధి.
5: నేను ఎం శ్రీనివాస్, డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్, హైదరాబాద్. పిల్లల పరంగా మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్స్ కానీ 0 to 18 ఇయర్స్ ఎటువంటి పిల్లలు మీకు కనపడినట్లయితే మీరు 1098కు కాల్ చేయండి. 24/7 అవైలబుల్ ఉంటుంది పిల్లల పరిరక్షణకై, హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ అన్నట్టు.

0: Well, it's 49 past 1 by the studio clock. Dear listeners, you are tuned in to Akashwani Hyderabad, FM Rainbow 101.9. Hello Rainbow का सफ़र जारी है और यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा मैंने कि कौन कौन से ऐसे सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैं जो आप दिन भर में करते हैं या फिर किसी और से रिसीव करते हो, और इन छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस की बात करें तो एक जो छोटा एक्ट हो सकता है ना काइंडनेस का, वो ये भी हो सकता है कि आप पब्लिक प्लेसेस में जो स्टाफ वर्कर्स होते हैं ना, उनको रिस्पेक्ट और काइंडनेस से ट्रीट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे गेट कीपर्स होते हैं और हेल्पर्स होते हैं स्टोर्स में, तो उन सभी को अगर हम रेस्पेक्ट और काइंडनेस से ट्रीट करें तो वो भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस हो सकता है। एंड साथ ही किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देना भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी कभी ज़िंदगी में थक जाते हैं ना, उनको समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है, और इन लोगों से मेरा मतलब है अच्छे खासे लोग जो अपनी लाइफ में खुश हैं, बट स्टिल कोई कोई दिन ऐसे आते हैं हमारी ज़िंदगी में जब हम लाइफ से हारने का सोच लेते हैं ना, दो लाइक वी ऑल आर फाइटर्स, हम लाइफ से लड़ते हैं, अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं, बट स्टिल कभी कभी ना हम भी थका हुआ महसूस करते हैं, और उन दिनों पर अगर आपको कोई इनकरेजमेंट दे, कोई आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे, तो वो भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस होता है। जी हाँ, एंड इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड यस, हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं कौन है वो। हेलो,
1: वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून निशा जी।
0: वेरी वेरी गुड आफ्टरनून श्रीनिवास जी। हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: कैसे हैं माँ?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए।
1: अरे हम तो बिंदास हैं मैडम, बहुत अच्छे हैं। हम क्या है, घर के बाहर ही नहीं निकलते तो सवाल ही नहीं है। तब हमारे को एसी का जरूरत ही नहीं पड़ता क्योंकि हम नीचे रहते हैं, ऊपर दो फ्लोर से, तो उसके लिए हमारे को ठंडा रहता है। तो फैन तो कैसा भी चलते रहता समझिए। तो अपने नए शमा जी मैडम को भी हमारी तरफ से नमस्कार बोलिए।
0: नमस्कार सर, नमस्कार जी। शमा जी भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी आप बात करें।
1: क्या था मैडम?
0: सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, जो छोटी छोटी हैबिट्स होती है ना किसी का अच्छा करने के लिए। हाँ जी,
1: तो क्या है, वो तो ऐसा तो हम मोहल्ले में रहते हैं, बहुत सारे चीजा करते रहते हैं। तो सुबह सुबह में क्या करते हैं मैडम, लोग घर के अंदर फूल का झाड़ रहता ना, उसको तोड़ते रहते।
0: अच्छा,
1: नीचे रहा तो अच्छा है, तोड़े तो चल जाता है, ऊंचा ऊपर उड़ के नीचे लकड़ी लेके मार के। मैं एक एक को बोलता हूँ, अरे क्या समझ रहे, तुम्हारा घर का है, तुम्हारा है, अरे देवल को भगवान को लगाने के वास्ते पैसे लेके लगाना भैया, ये फ्री फंड में ऊपर ऊपर चढ़ के दूसरों के घरों में निकाल के क्या कुछ, तो ही मतलब नजदीक में है, आपको हाथ को मिल रहा, ले लो। मैं नहीं बोल के बोलता नहीं, चढ़ चढ़ के ऊपर ऊपर करके करना ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा ये गलत बात है, वही बोलता हूँ। ऐसा है, पार्क में जाते रहते हैं हम, कैसा भी अगर कुंजी देता, कुंजी का हम मेरे पास ही अब लेके रख लिया हूँ, तो इसलिए। और क्या बोलते, लाइट जाते हैं, लाइट पार्क में जाते रहते हैं, वो लाइट उसका रिपेयरिंग वाले मालूम है अपने को, जीएचएमसी वाले का, तो वो लगा उनको फोन कर दिए तो लगा के अच्छा कर देते हैं। ऐसा आप बोले हो सर, छोटे छोटे चीजा कंपल्सरी। अब एक प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो गवर्नमेंट का लैंड है, दूसरे लोग उसको ऑक्यूपाई करना देख बोलना नहीं है, ऑक्यूपाई करना बोल के देख रहे हैं
0: जी,
1: फिर उसको हम जाके ये कर रहे हैं, चल रहा है वो।
0: ओके,
1: कुछ भी फैसला तो नहीं हुआ, बट नोबडी वाज ऑक्यूपाइड, बट दे आर ट्राइंग, अदर पीपल आर ट्राइंग टू ऑक्यूपाई दैट। हम जाके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जी चेंज में बात करे, फोन करे, सब करे, एक प्रजा पालना चलते रहता। एवरी मंडे इन दी जी चेंज वहाँ पर ये लेते हैं मेमोस, कोई तो भी देने वाले रहते तो उन लोगों को लगा वहाँ पे, जिससे उनको सर्कल में कौन से सर्कल में उनको बता के बोल देते
0: जी। तो चलिए,
1: हमारे को भी किया है मगर सचमुच इम्पोर्टेंट दे नॉट टेकन, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं।
0: ओके, तो
1: हाँ जी, थोड़ी चीजें जैसे आप बोले वैसा,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: अपने को अपने रास्ते में जो भी है अपने को जितना तक करने का रहता है, अब वो आप बोले सब वाटर अच्छी है, वो मैनुअल जाते रहते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी चीज है और काफी समय चला गया है, तो
1: ओके।
0: हाँ जी।

0: ओके मैम,
1: कॉल
0: थैंक
1: करने के लिए, बहुत
0: यू
1: बहुत
0: मैम,
1: शुक्रिया.
0: थैंक यू
1: थैंक
0: वेरी
1: यू
0: मच
1: सो
0: मैम,
1: मच,
0: थैंक
1: थैंक
0: यू
1: यू
0: इन
1: फॉर
0: चार्ज,
1: कॉलिंग जी.
0: थैंक यू.
1: थैंक यू, थैंक यू. तो जी हाँ, हमारे कॉलर्स ने हमें बताया कि वो कौन कौन से एक्ट्स ऑफ काइंडनेस में बिलीव करते हैं और क्या क्या अच्छा वो अपने इर्द गिर्द कर रहे हैं, कौन कौन से अच्छे चेंजेस अपने सराउंडिंग में ला रहे हैं. वेल, यहाँ पर कुछ लिसनर्स हमारे साथ व्हाट्सएप के भी थ्रू जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया हुआ है, मैं पढ़ना चाहूँगी. एंड ये हैं गनादीप, ये लिखते हैं कि एक्ट ऑफ काइंडनेस सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं होता, इंसान के लिए इंसान तो है ही, लेकिन हमें पेड़ पौधों, पक्षियों, जानवरों और छोटे छोटे कीड़े मकौड़ों के प्रति भी दयावान होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है. वो बोल नहीं सकते, अपना दर्द बता नहीं सकते, इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से उनको चोट या तकलीफ ना पहुँचे. और मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ सभी लोग हाइड्रेटेड रहिए और अगर हो सके तो अपने घर के बाहर या बैल्कनी में एक बाउल पानी जरूर रखिए स्ट्रीट एनिमल्स और बर्ड्स के लिए. तो चलिए, बहुत अच्छे आपने सोचा, बहुत अच्छा मैसेज. एंड ये लिखते हैं कि कभी कभी एक छोटा सा काइंडनेस का एक्ट किसी की जिंदगी बचा भी देता है. वाह, क्या बात है. सो थैंक यू सो मच इस मैसेज के लिए. एंड यस, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. एंड यस, इसी के साथ आज के लिए ये हेलो रेनबो का सफर यहाँ पर ख़त्म होता है. और उन सभी कॉल्स के लिए जो आज हमारे साथ इस शो का हिस्सा नहीं बन पाए, उन सभी लिसनर्स से सॉरी कहना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि यह हो सकता है फिर जब अगली बार मुलाकात हुए तो आपसे बात हो जाए. खैर, आज के लिए आपसे अलविदा लेते हैं इस वायदे के साथ कि होगी आपसे फिर एक बार मुलाकात. और उस अगली मुलाकात तक अपना रखिए अच्छा सा ख्याल, अपने अपनों का भी रखिए अच्छा सा ख्याल. और जी हाँ, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए एफएम रेनबो 101.9. और गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, जितना हो सके कम बाहर निकले, अगर काम ना हो तो बाहर ना निकले. और जैसा कि सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, कोई अगर प्यासा है तो उसे पानी पिला दीजिए, वो परिंदे हो सकते हैं, वो इंसान हो सकते हैं कि नहीं. एंड यस, इसी के साथ आपको छोड़े जाते हैं एक बेहतरीन गीत के साथ जो है फ्रॉम द फिल्म गाइड. और यहाँ पर मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आरजे वैंकी बिल्कुल तैयार है अपने प्लेलिस्ट के साथ, आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट, इन्फोटेनमेंट के साथ बिजी रखने वाले हैं. तो जी हाँ, सुनते रहिए एफएम रेनबो 101.9.

0: smart. Nutrumra.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: FM Rainbow 101.9

0: यंगेस्ट ऑफिसर्स था, फर्स्ट अटेम्प्ट एनडीए में चले जाएं आप हमारे टाइम पे, तो आप 15.5 साल की उम्र में आप एनडीए जाते हैं, आपकी दाढ़ी भी नहीं हुई होती, फर्स्ट टाइम शेव होता है वहाँ पे जाके, तो
1: रैगिंग हुई थी सर आपकी
0: बहुत
1: उसके बारे में याद है। 15 साल की उम्र में सर फौज में चले गए आप, और रैगिंग तो हुई होगी।
0: 15 रैगिंग की वजह से मैं कहूंगा आई शुड बी थैंकफुल ऑन द हाइंड साइट।

0: आप और रैगिंग तो हुई
1: साढ़े
0: होगी सर?
1: पंद्रह रैगिंग की वजह से मैं कहूँगा आई शुड बी थैंकफुल ऑन द हाइंड साइट, क्योंकि वो रैगिंग ने ही हमको वो स्ट्रेंथ, हमको वो ताकत, हमको वो निश्चय दिया है जो हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया. वो एक फाउंडेशन बन जाती है और वो फिर फॉर लाइफ टाइम आपके साथ रहती है वो. और वो बॉन्डिंग जो होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में वो रगड़ा के साथ ही होती है. बेसिकली रगड़ा होता है एंड देयर इज लॉट ऑफ एकेडमिक्स ऑफ कोर्स. वी हैव ए डिग्री फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन बीएससी एंड बीए. अदर देन दैट द सब्जेक्ट्स आर ऑल मिलिट्री साइंस, मिलिट्री ज्योग्राफी एंड देयर आर फील्ड एक्सरसाइजेस. लेकिन हम जो एनडीए से जो होते हैं वी आर बॉन्डेड सो वेल. मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी बॉन्डेड है. और अभी भी हम लोग रिटायर हो चुके हैं. पीपल माई कोस्टमेट्स हैव बीन जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, बट वी स्टिल रिमेन एंड टॉक लाइक एज इफ वी वर इन एनडीए.
0: आपने व्हाट्सएप का नाम लिया तो आज एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दूं कि हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है आप उसके साथ, उसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070, 9868107070. कोड वर्ड्स कुछ ऐसे होने चाहिए सर कि जल्दी समझ में आ जाए. आपको 15 साल की उम्र में किसने प्रेरित किया कि आप फौज में जाइए, एनडीए में जाइए?
1: देखिए मेरे फादर एयरफोर्स में थे
0: जी,
1: और हम लोग एक फौजी फैमिली कह लीजिए आपको. मेरी सिस्टर आर्मी में डॉक्टर थी. वो उन्होंने शादी भी एक आर्मी ऑफिसर से की जो कि एज ए आर्मी कमांडर जनरल रिटायर हुए हैं. और हमारे टाइम पे फौज के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था हमारी फैमिली में.
0: फौज में ही जाना है,
1: शुरू से ही एनडीए की तैयारी करनी है और यूनिफॉर्म पहननी है, क्योंकि फादर को देखा था यूनिफॉर्म में. और कोई कुछ उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं.
0: मदर तैयार थी कि फौज में जाइए, इतने सारे फौजी घर में. बोला नहीं उन्होंने ये बच्चा भी जाएगा वहाँ.
1: उनके हस्बैंड भी थे फौज में. उन्होंने फौज के बाहर फ्रैंकली कोई लाइफ ही नहीं देखी हमने. हमारा जो फौजी कंटोनमेंट्स होते हैं दे आर ऑल्सो ए क्लोज निट फैमिली. सारा सेल्फ सफिशियंट होते हैं वहाँ पे. फ्रॉम ऑफिसर्स मेस टू टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, योर मूवी थिएटर, एवरीथिंग इज सेल्फ सफिशियंट. You don't really have to go out in small little stations to the civilian area.
0: So is that a advantage or you think you miss something agar civilian area mein nahi ja rahe, kuch aisa?
1: Nahin, you miss aisi koi baat nahi hai. Actually most of the cantonments or army stations are in the field areas. So field area mein to you have to be self sufficient because aapko kuch milta nahi hai itna jo aapko chahiye, chahe ration ho, chahe jo entertainment chahiye wo tumhare aas paas hi honi chahiye. Metro cities mein dusri baat hai. We have of course approach to malls and cinema halls and so on. Kabhi kabhi aate hain field mein, agar aap posting kar le to agli posting most probably town mein de dete hain usko thoda rest dene ke liye.
0: मुझे ये बताइए कि आपने अपने फादर के साथ, आपके फादर की तो पोस्टिंग होती रहती होगी, जब वो एयरफोर्स में थे तब आप ज्यादा स्टेशंस में गए, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग सिटी, लाइफस्टाइल अलग, भाषा अलग, खान पीन अलग, पढ़ाई भी अलग हो गई होगी.
1: बिल्कुल सही बात है. ये एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी, बट आई टेक इट एज एन एडवांटेज बिकॉज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज दैट यू एक्चुअली come to see so many places, a new place every 2 years, 3 years. And I really love that. And actually, very frankly speaking, I still love to travel because of that, perhaps in, you know, thing which I've gone through. And after a while, my father ne socha, bhai, bahut ghumna ho gaya bachchon ko, to mujhe hostel mein dal diya, A4 school mein. Sukhota Park, Delhi mein. Boarding school.
0: TAFS kehte the usse.
1: TAFS. अब टैप्स हो गया,
0: पहले और मेरा एक कनेक्शन है,
1: एफसीएस होता था. सो उसमें बोर्डिंग स्कूल में डाला तो डिसिप्लिन और बढ़ जाता है, एनडीए की तैयारी हो गई. सो दैट इज हाउ द एकेडमिक्स वाज. लकीली आई वेंट थ्रू द एनडीए एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट
0: जी,
1: एंड एनडीए चले गए.
0: और हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आप टैंक रेजिमेंट के साथ जुड़े, T-72 टैंक के बारे में हम बात करते हैं. अहमदनगर में आपकी पहली पोस्टिंग गुजरात में थी?
1: नहीं, पहली पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में होती है
0: जी,
1: सबसे पहले. उसके बाद वहाँ 6 महीने बिता के हम लोग एक यंग ऑफिसर्स कोर्स करते हैं जो हमारा टैंक्स का कोर्स

0: अहमदनगर में होता है,
1: ओके
0: तो वहाँ पे हमको एक्चुअली रियली टैंक के बारे में पूरा पता चलता है, उसकी ट्रेनिंग, फायरिंग, उसका डीएनएम जो होता है, ड्राइविंग, मेंटेनेंस, गनरी, उसकी रेडियो कैसे चलती है।
1: ओके
0: और उस ज़माने में जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारे पास विजंत होते थे,
1: या विजंत
0: T-55,
1: या
0: और उसके बाद देन T-55 से हम T-72 में ग्रेजुएट हुए,
1: जी
0: जिस पर मैं इंस्ट्रक्टर भी था। मैंने
1: ओ वाओ
0: अहमदनगर में आई वॉज इंस्ट्रक्टर ऑन T-72 टैंक, एंड अब तो T-90s एंड अर्जुन्स आ गए हैं, उसके भी अपग्रेडेड वर्जन्स।
1: वर्जन है सर टैंक के बारे में मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं दे वुड आल्सो वांट टू लिसन कि टैंक का पहला जब आप देखते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो फौलाद लगता है पूरा, है ना? सो यू वेंट देयर बाय चॉइस और
0: माय फर्स्ट चॉइस इन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी वाज द टैंक रेजिमेंट अहमद को, एंड आई जॉइंड अ रेजिमेंट कॉल्ड द डेक्कन हॉर्स,
1: डेक्कन हॉर्स
0: जो कि 1790 में रेज हुई थी एज द प्राइवेट आर्मी ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद, and then it went through various transformation and it became Royal Deccan Horse and then the Deccan Horse after 1947 and we had a Muslim squadron in before 1947.
1: Achha.
0: After partition that squadron went into Pakistan in a regiment called Province Horse.
1: Okay.
0: For quite some time actually, strangely, we used to have a common newsletter also, I think, where Province Horse sort of became a sister regiment,
1: okay.
0: though in on the other side of the border.
1: Okay.
0: And we had one officer also till quite late going to London, UK, to attend the British officers who used to host their fathers, or they themselves served in the Royal Deccan Horse or the Province Horse. So
1: sir, quite a Deccan Horse ke saath judne ke baad wo jazba kaisa aaya, kuch वो अंदर की आपके अंदर की भावना, यू वांट टू शेयर विद अस?
0: यस, आई वाज ऑलवेज अ कैवलरी मैन, हम ब्लैक बेरेज पहनते हैं, काली टोपी
1: जी,
0: एंड हम लोग वन ऑफ द टू फाइटिंग आर्म्स हैं, एक इन्फेंट्री होती है, एक टैंक्स होते हैं। जो इन्फेंट्री होती है वो बेसिकली जब लड़ाई होती है तो अगर पहाड़ों में है तो इन्फेंट्री आगे होती है, टैंक्स नहीं जा सकते, लेकिन पंजाब या राजस्थान जो प्लेन्स में होता है
1: जी,
0: तो सबसे पहले जब लड़ाई शुरू होती है टैंक्स आगे जाते हैं,
1: okay.
0: वो लीड करते हैं, दे ऑक्यूपाई ए पीस ऑफ लैंड एंड देन द इन्फेंट्री गोज एंड ऑक्यूपाइज इट, ये अब हमारा हुआ, यू गो फॉर योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, सो दैट इज व्हाट द टैंक्स डू। इट्स अ टफ लाइफ, गर्मी होती है, अंदर बैठने की बहुत कम जगह होती है।
1: हाँ, वो थोड़ा हम जानना चाह रहे थे कितनी जगह होगी सर लगभग।
0: आपने पता नहीं वो अभी मूवी आई थी 21 करके जो पूना हाउस की अरुण खेतरपाल पर, तो उसमें टैंक कमांडर की एक ही सीट होती है, ये ऊपर का पोला होता है, उसमें बैठ के जाना है, वहीं सोना है, अपने सब कुछ वहीं करना है।
1: ओके।
0: एक स्ट्रेंज बात मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ कि विजंत टैंक में बहुत जगह होती थी, तो हम लोग जो जवान जब ड्राइवर एक्सरसाइज कर रहा होता तो आपने रेस्ट करना है, आप नीचे स्लीपिंग बैग लगा के सो भी सकते थे।
1: अच्छा।
0: लेकिन जो रशियन टैंक है वो बड़ा कॉम्पैक्ट होता है,
1: which is T-92,
0: T-72, T-55, T-54 okay. होते थे उसके okay. पहले, अब T-90s, कॉम्पैक्ट टैंक, उसमें एक गनर होता है, एक कमांडर होता है, एक ड्राइवर होता है।
1: उसके पीछे भी कोई वजह है कि आप अंदर उतना स्पेस नहीं दे रहे?
0: नहीं, उसमें बिकॉज स्पेस इसलिए नहीं है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर गैजेट्स इन दैट, बहुत सारे गैजेट्स हैं, यू नो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, यू नो, गनरी के गैजेट्स हैं, रेडियो के गैजेट्स हैं, ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस के गैजेट्स हैं, so you don't want to waste any time, there's a lot of ammunition space that is kept to load and reload the barrel.
1: Right. So aaj ke tanks bhi digitized ho gaye,
0: sort of. Digitized to computer to nahi hai andar, as far as I know now.
1: Dekhiye, but civilian hu, civilian wale sawal puchunga,
0: haan ji,
1: kya pata aapke paas ek GPS hai, aapko apni location, apna route aap dekh rahe ho, you never know.
0: Yes, yes.
1: अंदर आपके पास जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो शायद बदल गई हो, इट्स मोर टुवर्ड्स कुछ ऐसा जानना चाह रहा
0: था। के पास पहले एक नेविगेशन सिस्टम होता था क्वाड्रात,
1: ओके,
0: वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम था, खाली कमांडिंग ऑफिसर्स के टैंक में लगा होता था
1: जी,
0: लेकिन अब तो यू नो GPS है तुम्हारे पास, इनफैक्ट आई थिंक एक्चुअल वॉर, टैंक्स की वॉर रियली स्पीकिंग हुई नहीं है,
1: ओके,
0: लेकिन नेविगेशन इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम नाउ, एज यू नो, यू हैव इवन गूगल मैप्स।
1: वही मैं जानना चाह रहा था आपसे कि
0: so,
1: पर आप सोचिए एक अगर मैं सिविलियंस के लिए थोड़ा

0: समझना चाहूँ, सोचिए हमारे टैंक्स हैं, एक एक समय में अगर 10 टैंक्स अटैक के लिए जा रहे हैं, आपने सारा जो प्लान है, आपका जो मिशन है, वो सब कैलकुलेटेड है,
1: करेक्ट,
0: पर किसी वजह से आपको थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ा, 4 टैंक्स इधर गए या उधर गए, या आप ऐसे माहौल में फंस गए जहां आपके यू नो व्हाट यू प्लान कुड नॉट हैपन, नाउ यू हैव टू फेस. सो हु गाइड्स द रूट, वहां आप कैसे वो गाइडेंस लेते हैं?
1: सी देखिए ऐसा होता है, पहले तो ये सारी डिस्कशन सैंड मॉडल पे हो जाती है
0: ओके
1: कि क्या करना है, कैसे
0: जी
1: करना है, कहाँ
0: जी
1: जाना. देर इज मैं मैप्स, हमारे ज़माने के टाइम में बता रहा
0: जी
1: हूँ, मैप्स इशू
0: एब्सोल्युटली
1: होते थे, ग्रिड मैप्स,
0: जी
1: और उस
0: जी
1: पर
0: जी
1: हम लोकेशन कर देते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स,
0: जी जी
1: और कैलकुलेट कर लेते थे कितना टाइम है, किस स्पीड पे कितने टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए.
0: जी
1: फिर हमारे ईच रेजिमेंट में एक थ्री तीन स्क्वाडन्स होते हैं, और हर स्क्वाडन में ट्रुप्स होते हैं, तीन
0: ओके
1: ट्रुप्स,
0: ओके
1: हर ट्रुप में तीन टैंक होते हैं. तो यू नो, सो बेसिकली यू हैव ए स्क्वाडन कमांडर, ए ट्रुप लीडर्स जो सबसे जूनियर होते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: देन यू हैव ए स्क्वाडन कमांडर, एंड देन यू हैव द रेजिमेंटल सीओ.
0: जी
1: दे ऑल आर ऑन अ रेडियो नेट टुगेदर.
0: ओके
1: सो जो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं वो आपको इंट्रा नेट पे सारी इंस्ट्रक्शन सेम मिल रही हैं. अल्फा स्क्वाडन आप लेफ्ट जाइए, चार्ली स्क्वाडन आप राइट जाइए, ब्रावो स्क्वाडन होल्ड करिए यहाँ पे, होल्ड फायर, ये सारी होती है. जो सीओ होता है
0: अल्फा
1: वो
0: टू
1: एक
0: चार्ली
1: दूसरे नेट पे होता है जो उसके बॉस के साथ होता है,
0: ओके
1: ब्रिगेड कमांडर है और जीओसी के साथ, उसको वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं. वो इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं मिलती हैं,
0: ओके
1: हम लोग अपने रेजिमेंटल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं. जो सीओ ऑर्डर करता है कि ठीक है राइट फ्लैंक से फायर आ रही है, चार्ली स्क्वाडन आप राइट फ्लैंक पकड़िए, अल्फा स्क्वाडन आप
0: तो
1: लेफ्ट
0: थोड़ा
1: फ्लैंक
0: स्पोर्ट्स वाली
1: पकड़िए.
0: लैंग्वेज आ रही है, राइट फ्लैंक लेफ्ट फ्लैंक, फुटबॉल वाली.
1: इनफैक्ट दैट इज द
0: आपके वहाँ भी
1: लैंग्वेज
0: ऐसे ही होता
1: यूज्ड
0: है?
1: ऑल्सो
0: ओ
1: इन द आर्मी, देयर आर
0: अच्छा
1: फ्लैंक्स आर देयर. देखिए बेसिक वॉर का टेक्निक होता है कि अगर एनिमी फायर कर रहा है तो आपको एनिमी का हेड डाउन कर रखना है,
0: ओके
1: क्योंकि अगर आपने अटैक करना है उसके पहले एनिमी को बोलना है भाई यू यू मेक हिम बिजी एल्सवेयर, सो यू
0: या
1: टेल योर आर्टिलरी कि वो गोले बरसाए उनके ऊपर, वो ट्रेंचेस में हैं जहाँ पर भी हैं या टैंक्स में, और यू टेल योर एयरफोर्स टू बम्बार्ड ए पर्टिकुलर टैंक सेक्शन,
0: ओके
1: सो दैट द एनिमी इज बॉग डाउन एंड इट इज बिजी बिकॉज इट्स डाउन बिकॉज इट इज बींग बम्बार्डेड फ्रॉम ऑल ओवर, एंड दैट इज द टाइम यू हैव योर ऑलरेडी सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस टू गो फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट और फ्रॉम द रेयर एंड अटैक द एनिमी. यू डोंट वॉन्ट टू फेस ए एनिमी विच इज अप एंड अबाउट एंड फ्री टू फायर एट यू,
0: शायद
1: दैट इज द
0: यही
1: डिफरेंस.
0: गन्स जो हैं, कारगिल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था,
1: हाँ
0: उसके बारे में बात करेंगे सर, क्योंकि एक
1: यस
0: छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेने का
1: श्योर
0: मन कर रहा है. आप लोगों की तरफ से ये गीत हमारे सिविलियन भाइयों के लिए.

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जॉली और हमारे साथ आज के जो मेहमान है संदेश टू सोल्जर्स में वो है मेजर एस के यादव। आपका निक नेम मिकी है,
1: करेक्ट,
0: एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट?
1: क्लास टू में मेरी स्कूल टीचर ने मेरा नाम रख दिया था मिकी माउस और दैट नेम स्टक। वेरी फनीली आमटपोर में अगर आप किसी को बोलोगे डू यू नो मेजर स्वदेश कुमार यादव, दे विल लुक ए ब्लैंक, बट इफ यू टेल देम यू डू नो मेजर मिकी यादव, दे विल ऑल नो।
0: ओह वंडरफुल, रियल मेट्स आप लोग रहते हैं फौज में, है ना सर?
1: एब्सोल्युटली।
0: हम लोग टैंक

0: के बारे में बात कर रहे थे, टैंक की लाइफ। आपने कहा कि अंदर की लाइफ लगता है कि टैंक जा रहा है, टैंक ने फायर किया, ये हुआ हुआ, लेकिन अंदर की लाइफ उतनी आसान नहीं होती है। आप बिजी रहते हैं, है ना।
1: 55 डिग्रीज तक हीट में, समर्स में टेम्परेचर जाता है, उसके अंदर रहना पड़ता है। और एक्चुअल वॉर सिनेरियो में तो आपका कपोला ऊपर से बंद है, सीन है,
0: ओके,
1: एंड यू आर एक्चुअली लुकिंग थ्रू ए सॉर्ट ऑफ ए पेरिस्कोप,
0: या
1: उसमें से आप देख रहे हैं एनिमी को। सो इट्स ए वेरी टफ सॉर्ट ऑफ ऑपरेशनल लाइफ इन द टैंक, इनसाइड द टैंक।
0: ऑलराइट, हम जब 26 जनवरी की परेड में देखते हैं कि टैंक्स आ रहे हैं और जो भी कमांडर हैं वो सैल्यूट ले रहे हैं माननीय राष्ट्रपति जी से, लेकिन टैंक चलाने वाले कोई और हैं, तो वो उसी पेरिस्कोप से रूट देख रहे हैं।
1: हाँ, इनफैक्ट आई मस्ट इन्फॉर्म यू दैट मैंने वन ऑफ दिस परेड्स कमांड की है।
0: ओह वाओ, इट वाज
1: कॉल्ड अ कॉम्बैट टीम, एज ए यंग मेजर था तब मैं
0: जी।
1: तो मैंने रिपब्लिक डे परेड पे आई गेव द सैल्यूट टू द प्रेसिडेंट।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बेसिकली एक गनर होता है और जब सल्यूटिंग डाइस पे जाते हैं तो गनर को इशारा मिल जाता है कब उसने गन को राइट टर्न करना है और डिप करना है, विच इज द सल्यूट, रेस करना है, सामने जाना है और कैरी ऑन करना है। तो दैट इज द ऑर्डर, दैट इज ऑल द गनर्स टेक्निक, द कमांडर हैज टू ओनली सल्यूट विद हिज हैंड।
0: सब बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, एक गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि 26 जनवरी की परेड पर मैं भी जो आंखों देखा हाल है वो हम लोग कमेंट्री कर चुके हैं वहाँ पे, बट जब आप लोग टैंक्स लेके वहाँ जाते हैं ना, हम लोग को बड़ा बहुत गौरवान्वित फील करते हैं कि ये हिंद की सेना जा रही है। ये
1: टैंक एक सिंबल बन गया है, सॉर्ट ऑफ आर्मर्ड आर्मी का जो आर्मर्ड विंग है उसका जो तोपखाना कह दीजिए
0: जी,
1: तो इट इज बिकम अ सॉर्ट ऑफ, यस इट इज डिवेस्टेटिंग एंड इट इज, आई हैव हैड ए गुड टाइम इन माय टैंक रेजिमेंट, बिकॉज फील्ड फायरिंग होती है हमारी, प्रैक्टिसेस होती है रेंजेस पे, उसमें तो काफ़ी कुछ ट्रेनिंग होती है उस पर, दैट इज हाउ यू सॉर्ट ऑफ टैंक वॉरफेयर इज ऑपरेटेड।
0: और वो जो आपकी ट्रेनिंग है दैट इज a tough training, it is not like chalo yaar aao practice karte hain, no, it's like that's the real war
1: real
0: situation,
1: real life scenario war situations create hoti hain
0: ji
1: Rajasthan deserts mein aur wahan jaakar hum log practice karte
0: hain। Okay सर, मैंने कुछ मैसेजेस मंगाए हैं कुछ बहुत देश प्रेम के साथ, बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं वो मैसेज भेज रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि अहमदनगर से एक मैसेज आया है और वो कह रहा है मेरा नाम गजानन शिंदे है, गांव करजत जिला, और उसका नाम अभी अहिल्या नगर कर दिया गया है। सर ने अभी अहमदनगर की बात की तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। आप शायद इनको तो गजानन शिंदे जी को नोन टू यू
1: नॉट नोन टू मी बट यस देर आर लॉट ऑफ शिंदे इन दैट रीजन एंड अहमदनगर का जो आमट को स्कूल सेंटर एंड स्कूल है
0: जी
1: वो एक सेंट्रल पॉइंट है, मेनली उसी की वजह से वो टाउन ग्रो किया एक तरह से।
0: ओके,
1: जो सारी ट्रेनिंग जो हमारी होती है, चाहे रेडियो की, ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस की, गनरी की ट्रेनिंग, टैक्टिकल ट्रेनिंग, वो सारी जो बेसिक्स होती है वहीं पे हम लोग सीखते हैं।
0: एंड एवरीवन नोज अबाउट इट, देयर इज नो सीक्रेट इन इट, क्योंकि आप एयर पे बोल रहे हैं तो मैं अगर अहमदनगर के लोकेशन भी बता दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं।
1: इट्स अ पीस स्टेशन एंड इट इज बेसिकली ट्रेनिंग फॉर ट्रेनिंग, हम लोग जाते हैं
0: शिरडी के पास जो अहमदनगर है, आप उसकी बात कर रहे हैं। ऑलराइट, आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे वहां, सर वो जो आप फायर करते हैं जब टैंक से, उसकी एक्यूरेसी पे तो बहुत काम करते होंगे आप लोग।
1: हाँ, तो उसी के लिए हम फील्ड फायरिंग ट्रेनिंग करते हैं
0: जी,
1: जो कि हमारे रेंजेस हैं वेरियस प्लेसेस पे, बबीना में है, झांसी के पास, तो वहाँ पर जाके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, गनरी देखते हैं पूरी। एंड उसमें एक चीज होती है, आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि जब मैं यंग ऑफिसर था तो एक एम ऑफ होता है, मैं एक एक्सरसाइज में था कॉल्ड ब्रास टैक्स, जो ऑपरेशनल था, ऑलमोस्ट वी हैड गॉन अक्रॉस एंड आई वाज कमांडिंग ए स्क्वाड्रन। एंड वहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे सुबह सुबह, रात को हमें ट्रेवल, हम खाली रात को अपने कैमोफ्लाज नेट निकाल कर रात को घूमते थे और अपनी लोकेशन चेंज करते थे एवरी नाइट, क्योंकि हम लोग स्पॉटेड हो जाते थे और डे टाइम में अपने कैमोफ्लाज नेट लगा के चुप के बैठते थे। तो डे टाइम में हम सोते थे, रात को जगते थे।
0: ये कौन सी लोकेशन थी सर, अभी बताना ठीक है?
1: समवेयर इन द डेजर्ट बॉर्डर, उसके जैसलमेर के आगे आसपास, बॉर्डर के टाइम
0: जी।
1: तो वहां पे मुझे याद है सुंदर जी आर्मी चीफ थे और मैं चाय वगैरह चाय नहीं पी रहा था, सॉरी 11 बज गए थे।

0: दस ग्यारह बज गए थे।
1: मत बताइए क्या पी रहे थे रात के 10-11 बजे।
0: दो तीन हेलीकॉप्टर्स ऊपर घूम रहे थे, तो उस जमाने में ये जहरो वगैरह इतना नेविगेशन की जो आप बात करें इतना नहीं था।
1: जी
0: जो पायलट्स होते थे वो अपने थाइस पर एक मैप रखते थे और उसको
1: आजकल भी रखते हैं।
0: हाँ
1: सर,
0: रखते हैं, वो
1: हम लोग रखते हैं।
0: डेजर्ट में बड़ी मुश्किल होती है नेविगेशन, तो कई बार खो जाते
1: जी
0: थे कि भाई कहाँ जाना है। तो हम लोग अपनी टोपी शोपी लाते थे, वो नीचे आ जाते थे, निकलते थे, एनडीए का ही निकला कोई कोर्स में हेलीकॉप्टर। तो एक हेलीकॉप्टर नीचे निकला, उसमें से निकले सुंदर जी एंड एक थे जो हमारे तब के अरुण सिंह जी, राज्य रक्षा मंत्री।
1: ओके,
0: तो वो आ गए और सुंदर जी मुझे पहचान गए क्योंकि मैं एडीसी था आर्मी चीफ का। तो उसने बोला, मिकी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, सर मैं आई एम कमांडिंग स्क्वाड्रन हियर। तो उन्होंने बोला, आप इनको अरुण सिंह जी को ना टैंक के बारे में बताइए। तो मैं इंस्ट्रक्टर था, तो मैं टैंक पे उनको ले गया ऊपर। बट आई वॉज सरप्राइज दैट ही हैड सो मच नॉलेज अबाउट दैट टैंक। तो अभी आपने एमिंग की बात की, तो उन्होंने मेरे से एक चीज पूछा कि आप अगर एम ले रहे हैं एनिमी के टैंक के ऊपर तो आप सीधा फायर करते हैं के थोड़ा? तो मैंने कहा नहीं सर। उनको मालूम था एक चीज होती है एम ऑफ।
1: ओके,
0: अगर यहाँ से आप फायर कर रहे हैं 1 किलोमीटर दूर
1: जी,
0: तो आप सीधा फायर करेंगे तब तक टैंक निकल जाएगा। तो आपको एक एम ऑफ लेना पड़ता है,
1: गॉट इट,
0: कि आपने उस पॉइंट पे लाना है और कैलकुलेट करना है कि वो टैंक उसी पॉइंट पे यूं ऐसे तभी आएगा।
1: मूविंग व्हीकल पे आपको कैसे स्ट्राइक करना है।
0: सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड वेरी टेक्निकल, एंड आई वुड कॉम्प्लीमेंट दैट टाइम आरआरएम, आई मीन ही हैड लॉट ऑफ नॉलेज।
1: और कोई कॉम्बैट कभी मौका मिला?
0: हाँ, मुझे वैली शैली में नॉर्थ ईस्ट में मौका मिला है। एक्चुअल लड़ाई तो 71 वॉर की देखी नहीं, हम तो बच्चे थे
1: जी।
0: कारगिल वॉर तक मैंने फौज छोड़ दी थी, शायद नॉट लेफ्ट एंड टेकन पार्ट, बट देन टैंक्स का इतना रोल नहीं था वहाँ पर।
1: पर पहाड़ों में हम लोग जब बात कर रहे थे कि जिस तरीके से शेलिंग हम लोग करते थे, आप अभी हमें टैंक्स के जब आप बता रहे थे कि किस तरीके से आप आपका जो दुश्मन है उसका हेड डाउन करने पर मजबूर करते हैं, कैन वी कम बैक टू दैट?
0: यस, सो व्हाट हैपेंस इज दैट, लेट मी टेल यू अबाउट कारगिल ऑल्सो। कारगिल में भी जो लड़ाई हुई है ऊपर जो चढ़े हैं, जो सपोर्टिंग जो फायर्स दिए हैं वो आर्टिलरी गन्स ने दिए हैं, वो सॉफन करते हैं टारगेट को। सॉफन मतलब कि जो बंकर्स हैं ऊपर उनके ऊपर धड़ाधड़ बहुत हैवी फायरिंग होती है, और दैट इज द ओनली वे वेयर जो इन्फेंट्री है उसको एक वर्टिकल क्लाइंब करनी है।
1: ओके,
0: तो ऊपर से तो वो शूट डाउन हो जाएंगे, तो उनका सिर नीचे रखना है, उनका ध्यान निकालना, उनको इतनी हैवी बम्बार्डमेंट करनी है कि वो खड़े होकर शूट भी ना कर पाए और हमारी फौज वहां तक पहुंच जाए। तो दैट इज एन अटेम्प्ट, उसमें मरते हैं और कुछ जांबाज जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं वहां जाके और फिर हैंड टू हैंड फाइट होती है,
1: जो कि हुआ, मतलब हमने देखा वहां।
0: बिल्कुल हुआ,
1: हमारे पीवीसी जो हैं परमवीर चक्र से विजेता हमारे शो में भी आ चुके हैं।
0: यस यस एब्सोल्युटली,
1: संजय कुमार।
0: और यही चीज जब पंजाब साइड जब प्लेन्स में होती है वहां टैंक्स का रोल,
1: वहां टैंक्स का रोल,
0: क्योंकि वहां पे कोई चढ़ाई नहीं करनी है, वहां पे बैटल फील्ड आ रही है, टैंक कॉलम्स आ रहे हैं, आरटी आ रही है, आपने टेक ओवर करना है, तो टैंक्स लीड करते हैं वहां पे। और आजकल तो बीएमपी आ गई है जिसमें, और टैंक्स पर भी इन्फेंट्री को हम अपने पीछे कैरी करते हैं,
1: राइट?
0: तो हम आगे तक जाते हैं और टैंक्स एक्चुअली गो एंड अटैक, टेक ओवर द प्लेस एंड कैरी ऑन फॉर द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। इन्फेंट्री जो पीछे आ रही होती है बीएमपी में, वो उतरती है और फिजिकली वहां पहुंच जाती है पॉइंट पे, अपने ट्रेंचेस डिग करती है और वो बैठ जाती है, ये हमारा हो गया एरिया।
1: बट सर, आज के टाइम में, जस्ट लेमैन क्वेश्चन, टैंक जहाँ पे हम मिसाइल की बात कर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स की बात कर रहे हैं, तो टैंक के लिए इट्स मोर डिफिकल्ट द रेजिमेंट, और इट्स लाइक दे हैव देयर ओन वेज टू हैंडल सच अटैक्स?
0: यू सी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है
1: जी,
0: दिस वॉज ए टोटली डिफरेंट ऑपरेशन। इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली डिड नॉट रियली क्रॉस द बॉर्डर and we had remote controlled drones, we set off missiles without crossing the border, the aircraft shot their targets without really crossing the border. It was a totally different game, and I would credit this war a lot to the Indian artillery, because artillery ka role bada heavy tha idhar. They have these long range guns and they had their own targets and they were doing it. Mauka nahi mila operation sindur mein, shayad agar war 2-4 din aur chalti to armored aur infantry bhi andar jaake fir karna padta.

0: था तो वो दूसरी बात थी, लेकिन वो हुआ नहीं।
1: ओके राइट सर, एक हमारे लिसनर हैं एंड ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, श्री रंगम राजेश, श्री रंगम तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से लिख रहे हैं मैसेज एंड आपको गुड इवनिंग कहते हो, कह रहे हैं कि बॉन्डेड मेजर एस के यादव सर, मिकी यादव सर, ग्रीटिंग्स टू योर बॉन्डेड
0: गुड
1: द
0: इवनिंग
1: कंपनी
0: सर,
1: हियर एंड ऑफ
0: यू आर हैविंग
1: कोर्स
0: अ ग्रेट वन।
1: हम यहाँ पर उनका जो मैसेज पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं मराठा ग्रीटिंग्स टू योर बॉन्डेड व्हाट्सएप टू एंड योर MH16 अहमदनगर अहिल्या नगर मराठा बॉन्डेड रेजिमेंट टू एंड बॉन्डेड कैवलरी कैवले यादव सर टू. आई डोंट नो वॉट ही मीन्स बाय दैट बट समथिंग ही इज रिटन टिपिकल ऑफ महाराष्ट्र इज वणक्कम एंड दैट इज समथिंग वेरी स्वीट.
0: यस
1: समबडी
0: यस
1: नोन
0: यस
1: टू यू?
0: यस नो नॉट नोन टू मी, बट
1: ओके
0: यू नो वनकम आई थिंक इज नॉट ए महाराष्ट्रियन वर्ड, परहैप्स तमिल
1: हाँ,
0: वर्ड,
1: तमिलनाडु से लिख
0: बट
1: रहे हैं
0: ही
1: और
0: हैज द स्पिरिट
1: सारा
0: एंड
1: किया, जय हिंद,
0: यस
1: जय
0: जय
1: महाराष्ट्र,
0: किया
1: जय
0: एंड कैवल
1: तमिलनाडु,
0: ये
1: जय भारत. दैट्स द स्पिरिट दैट वी लिव विद है ना सर.
0: कैवलरी रेजिमेंट को ऑफिसर्स को कई बार कैवलियर बोल जाते हैं, सो
1: ओके
0: दैट इज वॉट इज मेंट।
1: ओके सूरज जी हमें दिल्ली से कह रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं 20 वर्ष का हूँ और सिविलियन हूँ, बहुत डिसिप्लिन रहना चाहता हूँ, कभी कभी मुश्किल होता है लेकिन आप लोगों की बातें सुन के प्रोत्साहन मिलता है. और साथ ही साथ हम आगे बढ़ रहे हैं सर, आपने ऑपरेशन सिंदूर की जब बात की तो मैं फिर से जानना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा, इफ इट्स अलाउड टू डिस्क्लोज, हमारी टैंक रेजिमेंट एक्टिव तो थी पर कितना, मतलब बहुत चौकन्नी भी थी एंड इट्स लाइक
0: नो नो, इन इंटायर ऑपरेशन सिंदूर में
1: जी
0: ऑल आवर फाइटिंग आर्म्स विद द टैंक्स इन्फेंट्री दे वर इन ऑपरेशनल स्टेज।
1: जी
0: छुट्टी लीव वॉज ऑल कैंसल्ड, वन डिड नॉट नो विच वे द वॉर वुड गो,
1: ओके
0: एंड इनिशियल वॉर जो शुरू हुआ है दैट वॉज ऑल एज आई सेड एन एयरफोर्स वॉर, एन आर्टिलरी वॉर। द टैंक्स एंड द इन्फेंट्री वॉज नॉट यूज, बट दे वर ऑपरेशनली रेडी टू गो इन शुड द ऑर्डर्स कम, एंड दे वर एब्सोल्युटली रेडी टू गो
1: ओके
0: इन।
1: मैं सीधे टफ क्वेश्चंस पूछता हूँ सर आपसे क्योंकि आप टैंक रेजिमेंट, आप उसका अंग रह चुके हैं, यू हेडेड योर ओन ग्रुप. इज इट बिकम मोर डिफिकल्ट नाउ टू स्टेप इन टू द एनिमी जोन इस मॉडर्न एरा में?
0: यू सी, देखिए ऐसी बात है कि टेक्नोलॉजी जिसके पास है आई वुड से ही इज हैज एन अपर हैंड।
1: सुपीरियर है वो.
0: यस,
1: ओके
0: सो अपेरेंटली द चाइनीज डिड गिव देम लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यू टू विच दे वर सम अर्ली दे ट्राई टू डू समथिंग हेयर एंड देयर। टर्की इंटरवीन्ड, गेव देम द ड्रोन्स एंड स्टफ लाइक दैट, बट वी आर, देखिए टेक्निकली एंड अदरवाइज पाकिस्तान इज नो मैच टू द इंडियन आर्मी एट ऑल, एंड आई एम सेइंग दिस ऑन एयर। There is no match at all. In a live war, in a conventional war today, they would not last more than 72 hours at the most. Not at all. There is no match at all.
1: सर हमें न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से हमारी सरहदों के पार फिजी आइलैंड से लेकर ब्राज़ील, कनाडा, यूरोप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट में सुना जा रहा है. दैट्स अ बोल्ड कमेंट, अ स्टेटमेंट दैट
0: No,
1: यू
0: I
1: गिवन.
0: meant every word of it. And knowing the Indian Army, the capabilities, yes, it has not been tested fully in Operational Sindoor, but should it be repeated ever, I think it will come to light what the Indian Army means about.
1: ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब अफसोस की बात है ना सर, और एक तरीके से हम एनिवर्सरी मना रहे हैं, थोड़ा दुख है कि पहलगाम में वो चीज़ हुई और उसके
0: एब्सोल्युटली
1: बाद भारत ने जवाब दिया, दुख है कि हमारे को सिविलियन लाइव्स खोनी पड़ी, उसका तो दुख है. एक छोटी सी, अगर आप परमिशन दे तो एक छोटी सी झलकी ऑपरेशन सिंदूर की
0: श्योर
1: लेते हैं और इस छोटे से किस्से में सब कुछ समझ में आ जाएगा. और आपका जो जज्बा मैं देख रहा हूँ सर आपकी आंखों में, आह लाजवाब है सर. इसे सुनते हैं सर.
2: हम बच्चा देगा, कोई बात नहीं, मैं तो करेगा फोन. क्या हुआ इसको, क्या हुआ? ओके, डोंट वरी, डोंट वरी, यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? अपने आप बोले ना मुझे.
3: यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा
2: हाँ
3: पति साइड में था,
2: ठीक है.
3: एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी.
2: यहाँ पे
3: उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी.
4: The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect.
5: I say

0: ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था।
1: इट वॉज डीम्ड एसेंशियल दैट द परपेट्रेटर्स एंड प्लानर्स ऑफ द 22 अप्रैल अटैक बी ब्रॉट टू जस्टिस।
2: 9 टेररिस्ट कैंप्स वर टारगेटेड एंड सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड।
3: दीज लोकेशंस आर लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, म्यानो, छोर एंड नियर कराची।
4: टू टारगेट सिविलियन पॉपुलेशन, इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट
5: एंड इट्स वेरी वेरी शेमफुल। टू पॉइंट आउट,
6: वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्वड इन द मिडल ऑफ वॉर दैट्स फंडामेंटली नन ऑफ आवर बिजनेस।
5: दैट टेररिज्म एंड फंडिंग एंड बैकिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैज बीन एंड वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान्स हिस्ट्री।
7: दिस वाज टाइम to convey some message to our adversaries.
8: We were of course prepared.
9: Few things have been said at the level of the Prime Minister.
10: भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
9: And this has never happened in the history of independence.

0: You were happy with how the forces responded. I mean, I know it's a funny question, but आपके कुछ सुनना चाह रहे हैं ना आपसे, इसीलिए ऐसा सवाल पूछा. Were you also willing to go कि यार मुझे बुला लो, मैं भी आता हूँ.
1: There and serving at that time because बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया ने और उनके जो मारे हैं हमने एयरफील्ड्स पे ऑलमोस्ट knocking on the door of their nuclear capabilities. It's a big thing. It was a big signal given to them.
0: And that technology you are saying ki yehi superiority aap bata rahe hain.
1: Yes, okay. The Air Force has that. I mean, it was pinpoint sort of, you know, absolutely, they were knocking on the door of their nuclear storage facility, which is a big thing.
0: Okay. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारा डिफेंस भी अच्छा होना बहुत जरूरी है ना. वी डिफेंडेड वेल आल्सो. ऐसा तो नहीं है कि वहां से अटैक नहीं है. अटैक्स तो बहुत आए लेकिन सारे विफल किए हमने.
1: एब्सोल्युटली उनके बेसिकली ड्रोन अटैक्स थे. अटैक तो क्या आया था उनका, मतलब एक आध कोई मिसाइल उन्होंने दिल्ली की तरफ भी डाला था जो कि मेरे ख्याल से मिडवे पंजाब में कहीं ऑलरेडी शूट डाउन कर दिया गया था
0: जी. दैट वाज द नियरेस्ट. बट हाउ डू यू नो कि वो दिल्ली की तरफ आ रहा था सर? हमारी टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल फायर होता है उसका रूट पता लग जाता है.
1: जब एनालाइज करते हैं जो मिसाइल को तो उसकी रेंज देख लेते हैं ना. अगर लाहौर से उस एरिया से जहाँ से अगर लॉन्च किया है, अगर वो दिल्ली रेंज में है तो ऑब्वियसली इट्स अ सिटी व्हिच इज बीइंग टारगेटेड. सो इट वाज डाउन, इट वाज एब्सोल्युटली शॉट डाउन. So that's a big thing, and I think that was the only real thing which was threatening to the city. And I was very surprised that they started saying that Delhi has been bombarded and Delhi is gone and Delhi is finished. All
0: you heard that?
1: Yeah, I mean they were saying अभी दिल्ली पे bombarded हो गई है, ये bombardment हो गई है. I mean all false fake news.
0: सर हमारे traffic jam में फंसेंगे तब उन्हें पता लगेगा कि how difficult it is to go out from here. एनीवे सर, ये तो हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की और ये चर्चा हम जारी रखेंगे.

0: आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और बहुत ही खास हमारे साथ यहाँ पे हमारे गेस्ट हैं आज के, और वो हैं मेजर एस के यादव। और बहुत सारे लोग आपको, आपके जो कॉलीग्स हैं वो आपको मेजर मिकी यादव भी कहते हैं। ओके, आप लोग का एक सॉलिड ग्रुप है, आपने कहा कि वी आर स्टिल बॉन्डेड टुगेदर। व्हाट्सएप का आपने कहा था कि ग्रुप है, तो इन ऑल कितने लोग होंगे उसमें?
1: एनडीए का

0: ग्रुप है, हम लोग करीब 325 लोग थे जो पास आउट हुए थे एनडीए से। देखिए एनडीए का ग्रुप अलग है, आईएमए का ग्रुप अलग होता है, जो एनडीए के थ्रू नहीं
1: जी
0: गए लेकिन
1: जी
0: डायरेक्ट एंट्री
1: जी
0: होते हैं, तो
1: जी
0: दो ग्रुप्स हैं।
1: ओके
0: तो एनडीए को हम बॉन्डेड बोलते हैं, बॉन्डेड ग्रुप है।
1: सो वो जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब तब आप लोग कैसी
0: हाँ,
1: बातें कर
0: बहुत
1: रहे
0: डिस्कशंस होती थी
1: थे?
0: और डिबेट्स भी, क्योंकि उसमें एयरफोर्स नेवी आर्मी हम तीनों थे कोस्ट मेट्स।
1: ऑलराइट
0: तो एयरफोर्स वाला अपना एक्सपर्ट बताता था, आर्मी वाला अपना, और नेवी वाला, वो जो देवर नेवी वाज ऑपरेशनली रेडी एक्चुअली फॉर द ब्लॉकेड ऑफ
1: मेरा अगला
0: कराची।
1: यही सवाल था कि सर आपको तो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट मिल रही होगी.
0: हाँ, ऑन द ग्रुप वॉट एवर देवर
1: या
0: ऑल्सो दे यूज टू प्रिडिक्ट, दे टू से वॉट शुड बी डन, वॉट वॉज नॉट डन राइटली, वॉट वॉज डन राइटली, एंड वी यूज टू डिबेट ऑल दैट।
1: एंड ऑफ कोर्स एक जज्बा बॉलीवुड भी तो लेकर आता है ना आप लोगों के लिए. आई एम श्योर आप गीत सुनते हैं, कभी गीत
0: यस
1: सुन के भी एक जज्बा जोश आ जाता है. हम लोगों
0: यस
1: को तो आता है, आप लोगों को भी आता है.
0: एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट।
1: आकाशवाणी के साथ आपका कैसा लगाव रहा है सिंस व्हेन?
0: पर्सनली मेरा फेवरेट है ये आपका रेनबो, बिकॉज इट गिव्स मी यू नो लॉट ऑफ रेट्रो म्यूजिक ऑल्सो, इट गिव्स मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ म्यूजिक, सो आई लाइक इट, इट्स माई फेवरेट, वन ऑफ
1: एफएम
0: माई
1: गोल्ड
0: फेवरेट
1: भी है जिसमें वो
0: एफएम
1: पुराने
0: गोल्ड
1: गाने.
0: है, आई लाइक इट।
1: तो आपने कब वास्ता कब पढ़ा आपका रेडियो से?
0: देखिए रेडियो तो एवर सिंस वी वर कमीशन्ड, हमारे पास तब ट्रांजिस्टर होता था, एक छोटा सा एफएम तो नहीं था, तब ऑल इंडिया रेडियो चलता था,
1: जी
0: चाहे
1: जी
0: बॉर्डर पे हो कहीं भी हो।
1: एब्सोल्युटली
0: इनफैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, एक ANPRC 25 रेडियो सेट होता था, हम लोग जब रास्ता एक्सरसाइज में थे और हम लोग ट्यूनिंग करते थे, कई बार हम पाकिस्तान बॉर्डर पे थे तो उनके गाने आ जाते थे उसमें
1: अच्छा उनके गाने
0: उनके
1: हमारे भी जाते हैं सर
0: हमारे
1: सड़क
0: भी
1: पर.
0: जाते हैं,
1: जी
0: तो उसको लगा देते थे, शेव करते करते गाने सुन लेते थे,
1: जी
0: वो जमाना था। सो रेडियो हैज हैड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली।
1: ऑलराइट तो कोई गीत अभी आप अगर बोलें कौन सा गीत प्ले करें?
0: हाँ, एक तेरी मिट्टी, दिस इज रिक्वेस्ट फ्रॉम नीति नीति भल्ला।
1: ओके आप ही के बॉन्डेड जो ग्रुप है उन्हीं की सदस्य हैं.
0: फ्रेंड्स हैं मेरे से, बॉन्डेड तो नहीं है, बॉन्डेड तो एनडीए वाला ग्रुप है, ये लेडी है।
1: ऑलराइट तो नीति जी आपकी फरमाइश पूरी हो रही है आकाशवाणी में.

संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ मेजर एस के यादव हैं और T-72 टैंक के इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, टैंक रेजिमेंट के साथ रह चुके हैं. आपके पूरे इस करियर में विद द यूनिफॉर्म ऑन, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें हमारे सिविलियंस के साथ जो बड़ा यादगार है, एक्शन के दौरान या कुछ

0: एडवेंचर?
1: पर्सनली मैं डिसिप्लिन के बारे में बता देता हूँ आपको. जब मैं यंग ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया था तो
0: जी
1: मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर था रेजिमेंट का.
0: वाह
1: और
0: सर, मेरे शो में स्पोर्ट्स आ ही जाता है, लोग कहते हैं आप
1: तो
0: जानबूझ के लाते हो, बट इट्स वंडरफुल टू हियर, प्लीज गो अहेड सर.
1: एक एडजुटेंट होता है हमारे, टोनी
0: राइट.
1: बेन्स, ही इज इन द यूएस नाउ, आई डोंट नो इफ ही इज लिसनिंग दिस. बट मैं नया नया था, मेरी 2 महीने की सर्विस थी.
0: ओके.
1: तो उन्होंने बोला शो मी द फुटबॉल शूज, डिस्प्ले करो कैसे हैं. तो मैंने शूज निकाले, डिस्प्ले कराए सारे रेजिमेंट के. तो एक शू में लेसेस नहीं थे, तो उसने उसकी वजह से मुझे गार्ड ड्यूटी, एक राउंड द क्लॉक गार्ड ड्यूटी की पनिशमेंट दी थी. उसमें क्या होता है कि यंग ऑफिसर को हर 1 घंटे बाद गार्ड रूम, एक जो हमारा होता है जहाँ पे हमारा एमिनेशन रखा होता है, वहाँ जाके साइन करना पड़ता है एवरी 1 आवर, स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट 9 PM टू मॉर्निंग 6 AM, सो दैट यू डोंट स्लीप.
0: अच्छा
1: सो दैट इज ए पनिशमेंट फॉर द यंग ऑफिसर इफ यू मेक ए मिस्टेक.
0: ओके.
1: सो माई मिस्टेक वॉज दैट आई डिड नॉट इंश्योर दैट देर आर लेसेज इन द फुटबॉल शूज.
0: एवर
1: So that I used to always remember.
0: बट
1: And
0: इट ग्रूम्ड यू इनटू अ गुड
1: yes,
0: इंडिविजुअल ना
1: yes,
0: सर?
1: exactly. NDA में also आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि अगर आपके पास टेबल मैनर्स नहीं है, दे
0: जी
1: टीच यू अदर देन दे टीच यू थिंग्स लाइक टेबल मैनर्स,
0: जी
1: कर्टसी, ओपनिंग द डोर फॉर द लेडी, टेबल के ऊपर आप एल्बो रख के नहीं खा सकते. अगर आपके
0: वाओ
1: सीनियर ने आपको देख लिया
0: जी,
1: तो वो आपका पूरा नमक आपके अंडे में डाल देगा,
0: वो बोलेगा
1: या
0: खाओ.
1: पूरा आप खाओ, या पूरा का पूरा आपको बोलेगा टेबल के नीचे जाओ. और वो सारे वहां से जो गलती कर देते थे नीचे से उसको बम्प्स पिक किक करते थे. तो ये चीजें आपको याद रहती है लाइफ
0: यस,
1: पर, यू नो, कि
0: बट आपको
1: मैनर्स क्या
0: प्रॉब्लम
1: होते
0: नहीं
1: हैं.
0: होती ये सब डिसिप्लिन लेके जब आप सिविलियन सोसाइटी में आप जाते हैं तो, है
1: काफी फौजियों को होती है, बट
0: ना?
1: एडजस्ट करना पड़ता है. बट इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट,
0: हाँ,
1: इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट.
0: तो गुस्सा कैसे जबाते हैं फिर आप?
1: अंदर अंदर हम बोलते हैं दीज ब्लडी सिविलियंस, जोकिंग करते हैं, दिस इज ऑल जोक्स. बट यू नो, अगर कोई मैनर्स वूनर्स का अगर हमारे जैसे होता है तो हम अपने मन में ही करते हैं.
0: आप जब आपने अपनी सर्विस पूरी कर ली उसके बाद एडवेंचर में आप चले गए, बिल्कुल
1: हाँ,
0: नेचर से
1: एडवेंचर
0: बहुत प्यार
1: स्पोर्ट्स
0: करते
1: में
0: हैं
1: चला गया था.
0: जी.
1: एंड माय कंपनी वाज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग बंजी जंपिंग इनटू इंडिया. वी वर द सेकेंड कंपनी टू ब्रिंग हॉट एयर बलूनिंग इनटू इंडिया.
0: ओ
1: एंड वी टू सेट अप एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर ट्रैक्स, माउंटेनियरिंग एंड स्टफ लाइक दैट, विच वी स्टिल डू. द कंपनी, आई डोंट नो वेदर आई कैन टेक द नेम ऑफ द कंपनी, वंडरलस्ट, एंड इट्स अ वेल नोन कंपनी नाउ.
0: तो आप एडवेंचर में, मतलब आपका शुरू से ही शौक था?
1: हाँ, ऑलवेज, राइट फ्रॉम द
0: ऑलवेज,
1: आर्मी
0: जब
1: डेज.
0: तक पैशन नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते ना
1: एब्सोल्युटली,
0: काम.
1: आर्मी डेज से ही. एंड इवन नाउ टुडे वी आई आई एम ए ट्रैकर, आई ट्रैक अ लॉट. वी आर गोइंग फॉर ए हरकी डून ट्रैक नेक्स्ट मंथ नाउ, एंड वी डिड द ग्रेट लेक्स
0: और कोई
1: ट्रैक.
0: सिविलियन आपके साथ जुड़ना चाहे जो डिसिप्लिन्ड है वो जुड़ सकता
1: नहीं, सिविलियंस आर ऑल्सो डिसिप्लिन, दे
0: है?
1: डू इट लॉट, एंड आई हैव लॉट ऑफ सिविलियन फ्रेंड्स, एंड वी ऑल गो टूगेदर
0: ओके.
1: इन माई ट्रैकिंग ग्रुप या अदर ग्रुप्स.
0: कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ये बताइए कि आज के टाइम पे जो युवाओं को आप देखते हैं, है ना, लेट्स गेट टू दिस पॉइंट स्ट्रेट, जब आप इनको देखते हैं तो आप 15 साल की उम्र में एनडीए गए, आप एक डिसिप्लिन्ड बॉय बन गए या बना दिए गए, उसके बाद एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपकी चली आगे, आपको लगता है कि अब जो मॉडर्न सोसाइटी के जो युवा हैं जो आपको सुन रहे हैं, कुछ शायद चाहेंगे कि फौज में आए, कुछ नहीं आ पा रहे होंगे, तो वो फौजी जैसी जिंदगी, वो डिसिप्लिन्ड लाइफ कैसे जिए?
1: देखिए, मेरा कहना है, एंड इट्स ए पर्सनल ओपिनियन, दैट एवरीबडी शुड स्पेंड सम टाइम इफ दे कैन इन द आर्मी, फॉर इवन इफ इट इज़ फॉर 5 ईयर्स, लाइक द शॉर्ट सर्विस कमीशन. ये जो बेस बनता है ना, जो शुरू का, एंड वो जो डिसिप्लिन जो बेस होता है वो अर्ली डेज में ही हो सकता है. आप वो बेस 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में नहीं बना सकते.
0: ग्रेट पॉइंट.
1: यू हैव टू कैट देम यंग. एंड ये अगर हम बेस दे दें अपने यूथ को कि आपको पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं, कि कंपलसरी आपको 5 ईयर्स या 3 ईयर्स की आर्मी ट्रेनिंग करनी है, देर विल बी ए होल लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट डिसिप्लिन,
0: यस.
1: टेल्स ऑफ पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, सो थिंग्स लाइक दैट विच द आर्मी टीचेज यू. एंड आई

0: होप समडे दिस हैपेंस.
1: राइट. आपको प्यार व्यार नहीं हुआ कभी सर? आप बहुत सीरियस सीरियस बातें करो. टैंक की बात कर दी मैंने, फायर कर दिया हेलीकॉप्टर से, जनरल उतरे उन्होंने बोला टैंक को इधर करो कुछ.
0: जब
1: आपको
0: यंग ऑफिसर होते थे नाभा में, एक छोटा सा स्टेशन है पंजाब में,
1: अच्छा
0: मुझे मालूम है कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर, नाम नहीं लूंगा, कोई भी सीओ की डॉटर्स होती थी, उनको इम्प्रेस करने के लिए हम लोग टेनिस बैडमिंटन खेलते थे
1: जोर जोर से
0: और
1: शॉटें
0: फिर
1: मारते थे.
0: कभी कभी कुछ लेटर्स एक्सचेंज होते थे तो
1: अच्छा.
0: टेनिस कोर्ट के पास कहीं एक लेटर चला जाता था, वहां से दूसरे दिन लेटर आता था, तो बस वही होता था.
1: बस
0: दैट इज द टाइप ऑफ रोमांस वी डिड इन दोस डेज.
1: अच्छा, एक रोमांटिक गाना चला देता हूँ सर. आप ही की
0: श्योर
1: प्लेलिस्ट से लिया हुआ है कुछ,
0: श्योर
1: इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किसकी फरमाइश चाहिए बताते हैं सर. ये गाना सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं जल्दी.

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं। मेरा नाम है मुनीश जौली और हमारे साथ मेजर एस के यादव मौजूद हैं। तो यादव साहब, अच्छा किया आपने थोड़ा बहुत बता दिया कि रोमांस है आपके दिल में और चिट्ठियां आप लिखते थे, तो फौजी की चिट्ठी भी वही होती है कि बम धड़ाके वाली या कुछ रोमांटिक बातें होती हैं उसमें?
1: फौजी भी आप जैसे ही हैं, हम और आप, और हमें भी वही फीलिंग्स है जो आप में है और वही जज्बा है, तो एब्सोल्युटली देयर इज नो डिफरेंस।
0: दिल्ली में अभी ये मौसम चल रहा है कि बोगनविलिया बहुत देखने को मिलता है, और उससे जुड़ी कोई खास बात आपसे जुड़ी हुई है?
1: बोगनविला मेरा एक पैशन था, एक माउंटेन्स भीमताल के पास एक मैंने फ्रूट ऑर्चर्ड बनाया है।
0: ओह वंडरफुल।
1: और उसमें करीब 500 फ्रूट ट्रीज लगाए हैं।
0: ओह।
1: एंड आई कॉल इट बोगनविला माउंटेन रिट्रीट। और 5 कॉटेजेस बनाई है, जो द गुड थिंग अबाउट दैट इज कि उसमें कोई RCC फुटप्रिंट नहीं है।
0: ओके।
1: खाली पाइन वुड, ग्लास और लोकल स्टोन का है।
0: अच्छा।
1: और उसमें खाली नेचर है, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, पहाड़ है।
0: आपने बातों बातों में हमें बताया और मैं भी डॉग लवर हूँ। एंड अभी लगभग 2 दिन पहले दिल्ली कैंट एरिया में जो कैंट बोर्ड है उसके जरिए एक वेट हॉस्पिटल भी खोला गया और न्यू दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने उसका उद्घाटन किया, सुन के अच्छा लगा। तो ये
1: मेरे पास मुझे याद नहीं है मेरी इंटायर लाइफ में एक्चुअली मेरी फैमिली में एक डॉग ना हो।
0: अच्छा।
1: एवर।
0: ओके।
1: माय फादर वाज अ डॉग लवर एंड आई हैव हैड लैब्राडोर्स। अब मेरे पास एक गोल्डन रिट्रीवर है, शिफू है उसका नाम। और अभी एक मेरे दोस्त ने मुझे एक पहाड़ी शीप डॉग जो उसको रोड साइड पर मिला था उसको उसने रेस्क्यू किया।
0: ओके।
1: एंड थैंक यू विवेक अगर आप सुन रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया कि अगर आप इसको रखना चाहे तो हम
0: बघीरा
1: उसका नाम रखा है और उसको हमने अभी 5-6 महीने का है एंड इज ए शीप डॉग और बहुत मजा आता है।
0: मेरे पास फोन आते हैं IPL के मैचेस आ रहे हैं, पासेस मिलेंगे पासेस में, विवेक ने अगर डॉग की जान बचाई तो एक पास उसको दूंगा IPL का। मैं नहीं सर, मैं देख के रहूंगा।
1: ओ वेस विवेक, यू अर्न्ड अ पास IPL पास इफ यू आर लिसनिंग।
0: टॉप टियर होगा।
1: लैंडोर में रहते हैं, मसूरी के पास।
0: फिर तो बच गए। एनीवे सर,

0: यू जस्ट मेंशन अबाउट योर डैड. आई थिंक हमारे प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता कि आपके एक तरीके से आइडल, आपके इंस्पिरेशन, आपके फादर फॉर्मर एयरफोर्स पायलट,
1: यस
0: हंटर जहाज उड़ाते थे और उसके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, जो फाइटर पायलट, यू नो, बिलोंग्स टू माई कम्युनिटी. टेल अस समथिंग अबाउट हिम सर.
1: माई डैड केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा
0: जी.
1: एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट स्टीफन्स कॉलेज
0: वाह.
1: एंड देन जॉइन द एयरफोर्स.
0: हरियाणा में कहाँ से सर?
1: एक गांव है रेवाड़ी के पास कॉल्ड दखोरा. इट्स नियर कोसली. अगर आपने सुना हो रेवाड़ी, रेवाड़ी तो सुना
0: वहां
1: है.
0: से और भी
1: इट्स
0: फाइटर पायलट्स आए हैं.
1: कोसली इज ए विलेज बाय द वे इन हरियाणा जहाँ पे सारे ऑफिसर्स यहाँ. देयर इज ए ऑफिसर्स मेस इन दैट विलेज. तो
0: स्क्वाड्रन
1: फाइटर पायलट
0: लीडर
1: हैं,
0: मनीष
1: आर्मी
0: यादव
1: के काफ़ी हैं,
0: जी.
1: एयरफोर्स के भी हैं.
0: ओके
1: सो दैट इज हाउ ही दैट इज हिज रूट्स. एंड देन
0: वाह.
1: ही ग्रू अप इन टू
0: एंड
1: द
0: वाज ही पार्ट ऑफ द वॉर? हंटर उड़ाते
1: यस
0: थे
1: यस
0: तुम.
1: ही वाज ही सीन द 71 वॉर, ही सीन द 65 वॉर. यस
0: ओके. और क्या खास बात आपके फादर में आपको लगती थी जो आप उनको, हमारे डैड हीरोज तो होते हैं लेकिन सबके डैड के अंदर एक खास क्वालिटी होती है, तो आपको क्या लगता था उनके
1: सुबह
0: अंदर?
1: सुबह जब वो यूनिफॉर्म पहनते थे मैं
0: जी.
1: देखता था छोटा बच्चा, और मैंने कहा यार मैं कब बड़ा होऊंगा और ये यूनिफॉर्म पहनूंगा. और ऊपर हवाई जहाज उड़ते थे, देखते थे हम लोग. एंड मेरे फादर भी टॉल थे, नाइस, एंड फॉलोड हिज फुटस्टेप्स.
0: पर आपने भी फ्लाइंग सीखी है एंड यू आर अ क्वालिफाइड पायलट.
1: यस, आई हैव गॉट ए सीपीएल.
0: ऑल राइट. तो हाउ कम एयरफोर्स को छोड़कर, नॉट दैट टैंक में नहीं जाना चाहिए था लेकिन लड़ाकू टैंक, लड़ाकू विमान
1: आफ्टर आई लेफ्ट द आर्मी
0: जी.
1: आई वेंट अवे टू यूके एंड
0: ओके
1: केंट से मैंने अपना फ्लाइंग लाइसेंस लिया था.
0: वाह. राइट सर, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम आगे और बढ़ें. आपके जो बॉन्डेड ग्रुप है वहां से कोई और फरमाइश तो नहीं आई सर गाने की? अगर आई है तो हम जाने से पहले उसे प्ले करेंगे सर.
1: काफी है, लेकिन आप अगर एक ये कर दो अभी ना जाओ छोड़ करके,
0: हाँ हाँ
1: या
0: हाँ कि दिल अभी भरा नहीं सर, ये तो
1: दिल
0: हमें कहना चाहिए आपके लिए कि
1: अभी
0: अभी ना जाओ छोड़कर. मोहम्मद रफी
1: यस
0: साहब की आवाज में एक गीत है तो इसको मैं चलाता हूँ ढूंढ के सर.

0: राइट देन सर, इट वाज अ शियर प्लेजर आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. एंड ये गीत तो मैं चला रहा हूँ, बट वी मीन इट एवरी लिरिक ऑफ दिस गोल्डन सॉन्ग. कुछ चलते चलते हमारे युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
1: थैंक यू सो मच गाइज. प्ले लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, प्ले लॉट ऑफ वेदर इज टेनिस, स्विमिंग, आउटडोर्स, एंड सी लेस ऑफ स्क्रीन टाइम.
0: वो बहुत जरूरी है सर. But it was a sheer pleasure hosting you, sir. And please look after yourself. And thank you so much.
1: Thank you. Thank you.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: FM Rainbow 101.9

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours
1: kanuni madad o salaah dilati tele na hame sahi raah dikhati
2: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
3: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

101.9 MHz पर ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 और 24 सेकंड्स हो रहे हैं। पेश है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

हरफ ताबिंदा के बाद नैरंग की बज्म सजेगी मुशायरे से। आज मुशायरे में डॉक्टर रहीम रमेश, मोहम्मद शरफुद्दीन अशरफ, शाहनवाज हाशमी, मोहम्मद आरिफुद्दीन अहमद और रहमान जामी अपना कलाम पेश करेंगे।

बज़्म ए नए रंग में सेहत के हवाले से कुछ बातें होंगी और कुछ फिल्मी गीत आपको सुनाएंगे। फिर पेश किया जाएगा सुरीले नगमों से सजा प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जाओ।

0: ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे जमा हुए हैं। अब शहर हैदराबाद नहीं बल्कि तेलंगाना के एक मुमताज़ शायर इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं। मेरी मुराद डॉक्टर रहीम रामेश से है। सदारत डॉक्टर रहीम रामेश करेंगे और हमारे हैदराबाद के मुमताज़ शोरा हजरात एक मुतरन्नुम शायर जो शाहनवाज़ हाशमी साहब हैं, हम इस मुशायरे के मेहमान खसूसी हैं। मोहम्मद शरफुद्दीन अरशद साहब और शरफुद्दीन अरशद साहब। तो दोस्तों बुजुर्गों, जैसा यौम आज़ादी के मौके पर हम नज़म पढ़ेंगे, तो मैं सबसे पहले दावत कलाम देता हूँ मोहम्मद अब्दुल रशीद अरशद साहब, जो शहर के एक अच्छे शायर और मुतरन्नुम शायर है। मेरी मुराद है मोहम्मद अब्दुल रशीद अरशद से।
1: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम की इजाज़त से मतला पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाइए। अमनो अमा के नगमे सुनाने का वक्त है।

0: का वक्त है, बताने का वक्त है, चारागिरी है शेवाम अहले कुलूस का, चारागिरी है शेवाम अहले कुलूस का, हम अहले कुलूस का, जख्मों को फूल जैसा बनाने
1: क्या बात है,
0: बनाने का वक्त है, जख्मों को

0: का वक्त है, आखिरी शेर पेश करता हूं।
1: मजहब
0: किसी का कुछ भी हो मजहब है दोस्तों, मजहब किसी का कुछ भी हो मजहब है दोस्तों, मजहब है दोस्तों, मुश्किल में सबका साथ निभाने का वक्त है, निभाने का वक्त है, मुश्किल में सबका साथ निभाने का वक्त है, निभाने का वक्त है। मक्ता पेश करता हूँ। अरशद बहुत से नगमे लिखे तुमने हुस्न पर,
2: क्या बात है।

0: का वास्ते है। सलाम अलैकुम।
1: मोहम्मद अब्दुल रशीद और अरशद साहब इंतहाई मुतरन्नुम शायर के बाद मैं दावत कलाम दूंगा। शरफुद्दीन अरशद साहब भी एक बेहतरीन और मुतरन्नुम शायर है, मेरी मुराद। तो मैं शरफुद्दीन अरशद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपना कलाम सुने।
2: सदर मोहतरम इजाज़त, आज़ादी वतन पे चंद खतात पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए कि दिल से कुदूरतों को मिटाने का वक्त है। दिल से कुदूरतों को मिटाने का वक्त है, इखलास के चराग जलाने का वक्त है। इखलास के चराग जलाने का वक्त है। आजादी वतन का 79वां साल है। आजादी वतन का 79वां साल है। आओ के आज जश्न मनाने का वक्त है। आओ के आज जश्न मनाने का वक्त है। एक खता और देखिए कि शाख पर हंसती हैं कलियां, रक्स करती है बहार।
3: क्या बात है।
2: शाख पर हंसती हैं कलियां, रक्स करती है बहार। नगमजन है चार सू गुलशन में मुर्गाने चमन।
3: क्या बात है।
2: नगमजन है चार सू गुलशन में मुर्गाने चमन। जुल्मतों ने खुद ब खुद डाला है चेहरे पर नकाब। जुल्मतों ने खुद ब खुद डाला है चेहरे पर नकाब। नूर बरसाने लगी आजादी सुबह वतन। नूर बरसाने लगी आजादी सुबह वतन। एक खता और मुलाहिजा फरमाइए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई नारा है।
3: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
2: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई नारा है। हर मजहब के लोग मिलेंगे हिंद में रहने वालों में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई नारा है। हर मजहब के लोग मिलेंगे हिंद में रहने वालों में। आजादी की जंग में सबने मिलकर खून बहाया था।
3: बेशक बेशक बेशक।
2: आजादी की जंग में सबने मिलकर खून बहाया था। हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हलचल थी ऐवानों में।
3: बहुत ही
2: हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हलचल थी ऐवानों में। और एक कथा और मुलाहिजा फरमाइए कि फल है अपनी ही तो ये मेहनत का। फल है अपनी ही तो ये मेहनत का। आज जन्नत बनी है हर वादी। आज जन्नत बनी है हर वादी। गुलसिता में ये कह रही है बहार। गुलसिता में ये कह रही है बहार। हो मुबारक ये जश्न आजादी। हो मुबारक ये जश्न आजादी। और एक शेर देखिए, ये खता पेश कर रहा हूं कि खुशी का जश्न मनाओ है जश्न आजादी। खुशी का जश्न मनाओ है जश्न आजादी। गमों को भूलते जाओ है जश्न आजादी। गमों को भूलते जाओ है जश्न आजादी। जो हाथ हाथ से मिल जाए ठीक है, लेकिन
3: जो हाथ
2: जो हाथ हाथ से मिल जाए ठीक है, लेकिन दिलों को दिल से मिलाओ है जश्न आजादी। दिलों को दिल से मिलाओ है जश्न आजादी। एक आखिरी खता पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाइए कि आज हिंदुस्तान में फिर इनकलाब आ जाएगा। आज हिंदुस्तान में फिर इनकलाब आ जाएगा। जश्न आजादी का परचम हर तरफ लहराएगा। जश्न आजादी का परचम हर तरफ लहराएगा। हर गली कूचे में अरशद जश्न आजादी है आज। हर गली कूचे में अरशद जश्न आजादी है आज। बच्चा

0: भक्ति के तराने गाएगा,
1: बेशक
0: बच्चा बच्चा देशभक्ति के तराने गाएगा। आज हिंदुस्तान में फिर इनकलाब आ जाएगा, जश्न आजादी का परचम हर तरफ लहराएगा, हर गली कूचे में अरशद जश्न आजादी है, आज बच्चा बच्चा देशभक्ति के तराने गाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
2: शरफुद्दीन अरशद साहब, एक हैदराबाद के सीनियर शायर के बाद मैं हैदराबाद नहीं बल्कि एक कुलहिन पैमाने पे भी कुलहिन मुशायरों में अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाले एक ऐसे मुतरन्नुम शायर शाहनवाज हाशमी साहब को मैं आवाज़ देता हूँ। शाहनवाज हाशमी साहब अपना कलाम सुने।
3: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ, उसी ज़मन में कौम एकजहती पर कुछ अशार सुनाने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। जनाब सदर की इजाज़त से मतलब अर्ज़ किया है।

0: वाह वाह,
1: बहुत बहुत अच्छा है। शाहनवाज हाशमी साहब इंतहा से ज़्यादा मुतरन्नुम शायर हैं और उनकी आवाज़ में जादू है। अब इसके बाद अब मैं ही अपना कलाम सुनाता हूँ। 15 अगस्त के ही, 15 अगस्त के ही सब गीत गा रहे हैं, 15 अगस्त के ही सब गीत गा रहे हैं, त्यौहार की तरह हम खुशियां मना रहे हैं, अंग्रेजों को भगाकर आज़ादी हम लिए हैं, अंग्रेजों को भगाकर आज़ादी हम लिए हैं, हिंदू हो या मुसलमान मिलकर ही रहे हैं,
2: बेशक बेशक,
1: अमन और शांति के, अमन और शांति के राहों पे ही चले हैं,
2: क्या कहने,
1: उल्फत के फूल हर सू, उल्फत के फूल हर सू हम भी खिला रहे हैं, त्यौहार की तरह, त्यौहार की तरह हम खुशियां मना रहे हैं, हर घर पे एक तिरंगा, हर घर पे एक तिरंगा हमने लगा लिया है, दुश्मन को दोस्त हमने, दुश्मन को दोस्त हमने अपना बना लिया है, हर एक गली को हमने, हर एक गली को हमने देखो सजा लिया है, नगमे खुशी के हर सू, नगमे खुशी के हर सू हम लोग गा रहे हैं, त्यौहार की तरह, त्यौहार की तरह हम खुशियां मना रहे हैं,
2: क्या कहने साहब,
1: ये ही दुआ है रब से, ये ही दुआ है रब से, फूले फले वतन ये, ये ही दुआ है रब से, फूले फले वतन ये, फूलों की तरह महके, फूलों की तरह महके दिन रात अब चमन ये,
2: क्या कहने साहब, बहुत अच्छे, बहुत हो,
1: हंसती रहे हमेशा, हंसती रहे हमेशा भारत की अंजुमन ये, उम्मीद हम सभी से यही लगा रहे हैं,
2: बहुत अच्छा बच्चा,
1: त्यौहार की तरह हम, त्यौहार की तरह हम खुशियां मना रहे हैं, 15 अगस्त के ही सब गीत गा रहे हैं, त्यौहार की तरह हम खुशियां मना रहे हैं, 15 अगस्त के ही सब गीत गा रहे हैं, त्यौहार की तरह हम खुशियां मना रहे हैं।
2: बहुत
1: मेरे चीदा चीदा कलाम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक छोटा तिफल मकतब हूँ, आप लोगों की हिम्मत अफजाई से मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब हमारे उस्ताद सुखन अवार्ड याफ्ता और रहमान जामी जो कौमी अवार्ड बैनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता, कौमी अवार्ड याफ्ता मौलाना आज़ाद अवार्ड याफ्ता के डॉक्टर रहीम रामेश साहब से मैं जो इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं मैं दावत कलाम दे रहा हूँ। डॉक्टर रहीम रामेश,
3: छोटी सी नज़म है जिसका उन्वान है प्यारा वतन।
2: जी अता
3: वतन, वतन से कितनी उल्फत है ये दुनिया को दिखा देंगे, वतन से कितनी उल्फत है ये दुनिया को दिखा देंगे, सजा कर अपने हाथों से इसे दुल्हन बना देंगे, वतन से कितनी उल्फत है ये दुनिया को दिखा देंगे, सजा कर अपने हाथों से इसे दुल्हन बना देंगे, कसम खाकर ये कहते हैं बुरा अगर वक्त आएगा लहू का खतरा खतरा आए वतन तुझ पर लुटा देंगे, कसम कसम खाकर ये कहते हैं बुरा अगर वक्त आएगा लहू का खतरा खतरा ऐ वतन तुझ पर लुटा देंगे,
2: बहुत, बहुत।
3: मेरे प्यारे वतन से

0: जो करेगा कोई गद्दारी उसे करके बहुत रुस्वा वतन से ही भगा देंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: मेरे
1: बहुत अच्छा,
0: प्यारे
1: बहुत
0: वतन
1: अच्छा,
0: से जो करेगा कोई गद्दारी
1: बहुत
0: उसे करके बहुत रुस्वा वतन से ही भगा देंगे। बुरी नजरों से देखेगा वतन को अगर मेरे कोई, सदा वो याद रखेगा उसे ऐसी सजा देंगे।
1: बहुत
0: बुरी
1: बढ़िया,
0: नजरों से देखेगा वतन को अगर मेरे कोई, सदा वो याद रखेगा उसे ऐसी सजा देंगे। तेरी खातिर ही जीते हैं, तेरी खातिर मरेंगे हम, तेरी चाहत में ही अपना ये मालो जर लुटा देंगे।
1: क्या
0: वतन
1: बात
0: से
1: है, क्या
0: कितनी
1: बात है,
0: उल्फत है
1: क्या
0: ये दुनिया को दिखा
1: बात है,
0: देंगे,
1: बहुत
0: सजा कर अपने हाथों से
1: वाह,
0: इसे दुल्हन बना देंगे। एक और नज़्म है जिसका उन्वान है जश्न आज़ादी। आओ जश्न आज़ादी इस तरह मनाएंगे, चार रुसू मोहब्बत के फूल हम खिलाएंगे।
1: क्या बात है साहब,
0: आओ जश्न आज़ादी इस तरह मनाएंगे, चार सू मोहब्बत के फूल हम खिलाएंगे।
1: खिलाएंगे, क्या
0: शम्मा अपने भारत में अमन की जलाएंगे,
1: बात है, क्या बात है,
0: शम्मा अपने भारत में अमन की जलाएंगे। सबको ही मोहब्बत से जीना हम सिखा
1: क्या बात है, क्या
0: वाह
1: बात है,
0: वाह
1: वाह,
0: सबको ही
1: बहुत बढ़िया,
0: मोहब्बत में जीना
1: जीना
0: हम
1: हम
0: सिखाएंगे।
1: सिखाएंगे, वाह,
0: दुश्मनों को हम अपने आईना दिखाएंगे, दुश्मनों को हम अपने
1: आईना
0: आईना
1: दिखाएंगे,
0: दिखाएंगे। मिलके हिंदू और मुस्लिम देश को बचाएंगे।
1: बचाएंगे, वाह
0: दुश्मनों
1: बहुत अच्छा, वाह
0: को हम अपना आईना दिखाएंगे,
1: क्या बात
0: मिलके
1: है,
0: हिंदू और मुस्लिम देश को बचाएंगे। पाई हमने आज़ादी खून अपना दे देकर, पुरखों की ये कुर्बानी कैसे भूल पाएंगे।
1: भूल पाएंगे,
0: पाई हमने आज़ादी खून अपना दे देकर, पुरखों की ये कुर्बानी कैसे हम भूल पाएंगे। सारा देश देखेगा अपनी आंखों से मंजर, फिर से चिड़िया भारत को सोने की बनाएंगे। सारा देश देखेगा अपनी आंखों से मंजर, फिर से चिड़िया भारत को सोने की बनाएंगे।
1: बनाएंगे, वाह
0: शेर बकरी पीते थे एक घाट पर पानी,
1: क्या बात है,
0: शेर
1: क्या
0: बकरी
1: बात है,
0: पीते
1: बहुत
0: थे एक
1: अच्छा,
0: घाट पर पानी, फिर से अपने भारत को ऐसा ही बनाएंगे।
1: माशाल्लाह,
0: आबरू बहन माँ की फिर लुटे ना भारत में,
1: क्या बात, क्या बात है
0: आबरू
1: साहब,
0: बहन माँ की फिर
1: वाह
0: लुटे ना भारत में, औरतों की इज्जत भी करना हम सिखाएंगे।
1: बेशक, वाह वाह,
0: हर
1: बहुत अच्छा,
0: तरफ हो खुशहाली कोई भी ना गमगी हो, हर तरफ हो खुशहाली
1: कोई भी
0: कोई
1: ना
0: भी ना
1: गमगी,
0: गमगी हो, एक नमूना जन्नत का देश को बनाएंगे।
1: क्या बात है,
0: हर
1: बहुत अच्छा,
0: तरफ हो
1: बहुत अच्छा,
0: खुशहाली कोई भी ना हो गमगी, एक नमूना जन्नत का देश को बनाएंगे। मकसद देखिए, खून बहे ना लोगों का, खून बहे ना लोगों का एक खतरा भी रामिश, देश के उसूलों को हम नए बनाएंगे। आओ
1: बहुत अच्छा,
0: जश्न
1: बहुत अच्छा,
0: आज़ादी
1: बहुत अच्छा,
0: इस तरह मनाएंगे,
1: बहुत
0: चार
1: अच्छा,
0: सौ मोहब्बत के फूल
1: वाह
0: हम खिलाएंगे।
1: वाह वाह,
0: और सारा देश देखेगा अपनी आंखों से मंजर,
1: मंजर,
0: फिर
1: वाह
0: से चिड़िया भारत को सोने की बनाएंगे। शेर बकरी
1: शेर बकरी,
0: पीते थे एक घाट पर पानी,
1: क्या
0: फिर
1: बात
0: से
1: है,
0: अपने भारत को ऐसा ही बनाएंगे। आबरू बहन माँ की फिर लुटे ना भारत में, औरतों की इज्जत भी करना हम सिखाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वाह, बहुत अच्छे।

या फिर उससे ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। मौसम गर्मा अब जबकि अपने उरूज पर है, तो इस मौसम में नाक से खून बहना एक आम सी शिकायत है और इस शिकायत से बचा जा सकता है। नाक से खून बहने की शिकायत को नकसीर भी कहा जाता है। ये एक ऐसी कैफियत है जो ज़्यादातर वक्ती होती है, ताहम बाज़ औक़ात ये किसी संजीदा बीमारी की अलामत भी बन सकती है। इसीलिए उसके वजूहात, असरात और एहतियाती तदाबीर को जानना इंतहाई ज़रूरी है। सेहत के माहरीन कहते हैं कि नाक के अंदर नहायत बारीक खून की नालियाँ होती हैं जो सतह के करीब होती है, इसीलिए मामूली खुश्की या जलन से वो फट सकती हैं। मौसम गर्मा में हवा खुश्क हो जाती है, जिससे नाक के अंदरूनी हिस्से खुश्क होकर फट जाते हैं और खून बहने लगता है। पानी की कमी भी नकसीर की वजह बनती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक ज़्यादा पसीना आने से जिसमें पानी की कमी हो जाती है, नाक की झिल्ली खुश्क हो जाती है और खून बहने का खतरा बढ़ जाता है। इस आम शिकायत से किस तरह से बचा जा सकता है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक नगमा सुनने का। लीजिए सुनिएगा फिल्म एयरलिफ्ट का ये गाना, जिसे आवाज़ दी है अरिजीत सिंह, तुलसी कुमार और साथियों ने।

अब सवाल ये उठता है कि क्या नकसीर खतरनाक होती है। ज्यादातर मामलात में नाक से खून आना खतरनाक नहीं होता, ये मसला खुद ब खुद ठीक हो जाता है और आम तौर पर एक वक्ती मसला होता है। ताहम अगर बार बार नाक से खून बहता है, चक्कर आती है या कमज़ोरी महसूस होती है तो ऐसी सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगरचे आमतौर पर यह संजीदा मसला नहीं है लेकिन इसके कुछ असरात हो सकते हैं। ऐसे अफराद जिन्हें नाक से खून आता है उनमें बेचैनी और घबराहट पाई जा सकती है, रोज़मर्रा के कामों में खलल पड़ सकता है, शदीद सूरत में कमज़ोरी या फिर चक्कर आ सकती है। माहिरीन सेहत ने इससे बचाव के आसान तरीके तजवीज़ किए हैं। गर्मियों में नकसीर से बचने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए। नाक को नम रखने के लिए सलाइन स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है। खुश्क माहौल से बचने या फिर ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करना और नाक में उंगली डालने या उसे ज़ोर से साफ़ करने से गुरेज करना ज़रूरी है। सेहत के माहरीन का मशवरा है कि धूल धुएँ और एलर्जी से बचना चाहिए, और अगर बार बार नाक से खून आता है, खून ज़्यादा मकदार में बहता है और नकसी रुकने में वक्त लगता है तो ऐसी सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। कहा जाता है कि नाक से खून बहने के साथ साथ चक्कर आना, कमज़ोरी या दीगर अलामात ये नुकसानदह साबित हो सकती हैं। तिबी माहरीन के मुताबिक मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ना सिर्फ नकसीर से बचा जा सकता है बल्कि उसके मुमकिन ख़तरात को भी कम किया जा सकता है।

सामईन, आप सभी सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। गीत सुनाने से पहले हम बात कर रहे थे नकसीर के बारे में। सेहत के माहिरीन कहते हैं कि मौसम गर्मा में अक्सर खुश्क हवा नाक की नमी कम कर देती है, जिससे नकसीर के इम्कान बढ़ जाते हैं। गर्मियों में धूल की वजह से एलर्जी बढ़ती है, जो नाक में सोजिश पैदा करके खून बहने का सबब बन सकती है। शदीद गर्मी खून की नालियों को फैला देती है, जिससे वो आसानी से फट सकती है।

तो सामीन, ये थी मौसमी गर्मा में होने वाली एक आम शिकायत यानी नकसीर के हवाले से चंद एहतियाती तदाबीर और तिबी माहरीन के मशवरे। आइए, नैरंग की बज़ में पेश है प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा। सामीन, आज के गीत सुरीले गाता जा में हम एक ऐसे अदाकार की बात करेंगे जो आज हमारे दरमियान तो नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी अदाकारी और उनकी फिल्मों के नगमे आज भी पसंद किए जाते हैं। वो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। वो अदाकार कौन है? हम आपको उनकी फिल्मी सफ़र के बारे में बताएंगे और उनकी फिल्मों के गीत भी सुनाएंगे। पहले सुनते हैं उनकी फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत, और हमें यकीन है कि उस गीत को सुनने के बाद आप ये जान जाएंगे कि गीत सुरीले गाते जा में हम आज किसकी बात करने वाले हैं।

समईन सरगम फिल्म के इस खूबसूरत से गीत को सुनने के बाद यकीनन आप जान गए होंगे कि आज के गीत सुरीले गाते जा में हम एक ऐसे अदाकार की बात करेंगे जिन्होंने 4 दहाइयों तक बॉलीवुड पर राज किया। बॉलीवुड की तारीख में ऋषि कपूर का नाम एक ऐसे अदाकार के तौर पर लिया जाता है जिन्होंने अपनी सदाबहार अदाकारी से कई नस्लों को मुतासिर किया। वो न सिर्फ रोमानवी हीरो के तौर पर मकबूल हुए बल्कि वक्त के साथ खुद को एक संजीदा और हमा जहत फनकार के तौर पर भी उन्होंने पेश करते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनका फिल्मी सफर 4 दहाइयों पर मुहित रहा जो हिंदुस्तानी सिनेमा के मुख्तलिफ अदवार की अक्कासी करता है। ऋषि कपूर 4 सितंबर 1952 को मुंबई में पैदा हुए। अदाकारी का फन उन्हें विरासत में मिला था। उनके वालिद राज कपूर हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया के एक अजीम अदाकार, प्रोड्यूसर और हिदायतकार थे। घर के फिल्मी माहौल ने बचपन ही से उनके जहन में अदाकारी का शौक पैदा कर दिया था। ऋषि कपूर ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म मेरा नाम जोकर से किया। सन 1970 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में उन्होंने एक कम उम्र लड़के का किरदार अदा किया था। उनकी फितरी अदाकारी ने सबकी तवज्जो हासिल की और उन्हें बेहतरीन चाइल्ड आर्टिस्ट का कौमी अवार्ड भी मिला। अगरचे ये फिल्म इब्तदा

में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन बाद में उसे एक अहम फिल्म के तौर पर तस्लीम किया गया। ऋषि कपूर को सन 1973 में रिलीज होने वाली फिल्म बॉबी से शोहरत मिली। उस फिल्म में उन्होंने डिंपल कबाड़िया के साथ मरकजी किरदार अदा किया। फिल्म की कहानी ने ना सिर्फ नाजरीन को मुतासिर किया बल्कि ऋषि कपूर को एक कामयाब रोमानवी हीरो के तौर पर भी मशहूर होने का मौका मिला। फिल्म की कामयाबी ने कहा जाता है कि फिल्म की कामयाबी ने राज कपूर को माली मुश्किलात से भी निकालने का काम किया। सामीन, आप सभी सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग, गीत सुरीले गाता जा में आज हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर की। ऋषि कपूर के बारे में और भी बातें होती रहेंगी लेकिन साथ साथ फिल्मी नगमे भी आप सुनते रहेंगे, तो चलिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत जो कि लिया गया है फिल्म खर्च से।

गीत सुरीले गाता जा में आप सुन रहे हैं ऋषि कपूर के बारे में और ऋषि कपूर की फिल्मों के खूबसूरत से नगमे। इब्तदाई कामयाबी के बाद कुछ फिल्में तवक्कात पर पूरी न उतरी, लेकिन उनकी एक फिल्म जिसका नाम था खेल खेल में, जिन्होंने उन्हें कामयाबी की बुलंदियों पर पहचाना पहुंचा दिया। इस फिल्म में उनके साथ नीतू सिंह ने काम किया और दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। बादशाह ऋषि कपूर और नीतू सिंह अमर अकबर, एंथोनी, कभी कभी और कई दूसरी फिल्मों में नजर आए। सन 1975 में रिलीज होने वाली फिल्म खेल खेल की सबब ऋषि कपूर को काफी मकबूलियत मिली। फिल्म अकबर एंथोनी में ऋषि कपूर ने अकबर का किरदार अदा किया और आज भी उनके यादगार किरदार को याद किया जाता है। फिल्म की कव्वाली पर्दा है पर्दा आज भी बेहद मकबूल है। और इसी तरह फिल्म हम किसी से कम नहीं में भी उनकी अदाकारी को खूब सराहा गया और गीत भी नाजरीन को बेहद पसंद आए।

0: 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज की घड़ी में 10:37 हो रहे हैं। आप सभी सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा, और आज हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर की। फिल्म प्रेम रोग में ऋषि कपूर ने संजीदा अदाकारी की और ये साबित किया कि वो सिर्फ रोमानवी किरदारों तक महदूद नहीं है। सन 1979 में रिलीज होने वाली फिल्म चांदनी में उन्होंने एक ऐसा किरदार अदा किया जिसमें रोमान और संजीदगी दोनों शामिल थे। उस फिल्म में उनकी कारकर्दगी को बहुत सराहा गया। 1990 की दहाई में उन्होंने फिल्म साजी में भी कदम रखा, लेकिन बतौर हिदायतकार उन्हें खास कामयाबी ना मिल सकी। ऋषि कपूर के बारे में बातचीत करने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन सुनते हैं उनकी फिल्मों के कुछ पसंदीदा चुनिंदा नगमे। लीजिए सुनिएगा फिल्म चांदनी का ये गीत।
1: चांदनी ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।

सन 2000 में ऋषि कपूर ने अपने करियर का रुख बदला और उन्होंने अपनी उम्र के मुताबिक किरदारों का इंतखाब करना शुरू किया। वो हर किरदार को भरपूर अंदाज में निभाया करते थे। फिल्म लव आजकल में उनकी अदाकारी को ना सिर्फ पसंद किया गया बल्कि उन्हें बेहतरीन माविन अदाकार का अवार्ड भी मिला। अपने तवील करियर में ऋषि कपूर ने तकरीबन 150 फिल्मों में काम किया, जिनमें अग्निपथ, दामिनी, दीवाना, लैला मजनू और दिगर कई काबिले जिक्र हैं। हर दौर में उन्होंने खुद को नए अंदाज में पेश किया, जो उनकी फनी सलाहियत और मेहनत का सबूत है।

वो रुला के हंस ना पाया देर तक, वो रुला के हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक। भूलना चाहा कभी उसे उसको, भूलना चाहा कभी उसको अगर, और भी वो याद आया देर तक। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक, वो रुला के हंस न पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी इंदु पांडे। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह

0: मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल नॉर्वे के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री जॉर्ज ने भारत और नॉर्वे के बीच मजबूत और बहुआयामी साझेदारी पर बल दिया। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल R.N. रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वैत्री कड़गम टीवी के पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिनभर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने वर्ष 2026 में पराली जलाने की घटनाओं को खत्म करने की तैयारी की समीक्षा बैठक की। इसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आकाशवाणी के 90 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी में आकाशवाणी एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन के गेट नंबर 3 से होगी। ये दौड़ कृषि भवन, रेल भवन और भारतीय रिजर्व बैंक बिल्डिंग से होते हुए आकाशवाणी के रंग भवन पर संपन्न होगी। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजन भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। The nation yesterday saluted the courage, commitment and supreme sacrifice of the armed forces on the first anniversary of Operation Sindoor. On this day last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on the 22nd of April last year. In their message on the occasion, the President, Vice President and Prime Minister described Operation Sindoor as a landmark expression of country's uncompromising stand against terrorism and threats to national security. President Draupadi Murmu called Operation Sindoor as a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism and all forces that threaten

अजियो, हमने तो पहचान लिया आपको। अब के सफर में दर्द के पहलू अजीब हैं। ध्यान से सुनिएगा कि अब के सफर में दर्द के पहलू अजीब हैं। जो लोग हम ख्याल न थे, हम सफर हुए। एक बार फिर से आपका स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। ये है हमराही, हम और आप, एक राह।

अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि हम कहें नहीं और आपने सुन लिया, तो आप क्या कहेंगे? हर एक बात के यूं तो दिए जवाब बहुत सारे, जो खास बात थी हर बार हंस के टाल दिया। ऐसा ही कुछ होगा ना। अगर मान लीजिए कि कोई तारीफ करने पर आ ही जाए, तब क्या होगा? सोच के बताइए।

और तारीफ से जो शुरुआत शुरू होती है वो कहाँ तक जाती है इसका पता तो नहीं चलता, लेकिन हाँ ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। ये और बात है कि कई बार हमें साथ चलते हुए एक राह पे जिसे हम और तुम जब मिले तो हमराही बने, तो शहर दर शहर फिरते रहे, रास्ते घर नहीं जाने देते, आगे दुनिया नहीं जाने देती, पीछे बहुत सारे मंजर हैं वो नहीं आने देते। शाम आती है मगर हम घर से निकलना ही नहीं चाहते, कई बार उलट देते हैं पैमाने दिल के, न जाने क्यों उसे भर के हम फिर से नहीं जाने देते। देखिए जनाब, ये जो समय है ना, ये ऐसा समय है जिसमें बहुत सारी चीज़ें उलट उलट के हमारे पास आती हैं, जिन्हें हम रात की साई में ही पहचानना या फिर याद करना मुनासिब समझते हैं, और उसके बाद लगता है कि हाँ कुछ तो है जो जादू की तरह लगता है हमारे आसपास।

और हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। उसी में अगर रात का जिक्र हो तो फिर और भी बात बन जाती है। इसीलिए कहा गया है ना कि हमारे जो अंदर का मन है वो बाहर कई बार आने में संकोच करता है, और जब आता है तो फिर बात वहीं से शुरू होती है। लेकिन कई बार रात की जब बात आती है तो ख्वाब अपने आप चले आते हैं, और ख्वाब ऐसे कि टूटते ही नहीं। ख्वाब ताबीर में ढला ही नहीं, वो दरीचा अभी खुला ही नहीं। खाक पर रह गए हैं नक्शे कदम, और मुसाफिर का कुछ पता ही नहीं। तब आप क्या कहेंगे? यही यही कि हाँ, बहुत सारे वादे, बहुत सारी बातें हैं मेरे दिल में तुम्हारे लिए।

अच्छा, सच सच बताइए कि मोहब्बत में जब हम होते हैं तो क्या बार बार हमें मोहब्बत है बोलने की ज़रूरत पड़ती है? दोनों जवाब हो सकते हैं, कोई कह सकता है कि हाँ और कोई कह सकता है कि हाँ नहीं भी, लेकिन हमें यकीन नहीं है कई बार अपनी रंगत पे। और कई बार कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनको हम मायने तो जानते हैं लेकिन न जाने क्यों बार बार उनको सुनने का मन करता है। ऐसा आपके साथ कभी हुआ? कभी आपने फील किया इस बात को?

0: मुझे देख कर आपका
1: न जाने क्यों मोहब्बत में कहां से ये चांद तारे शामिल हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कभी देखा है किसी ने जिक्र किया हो सूरज का? नहीं ना। लेकिन कुछ तो ऐसी चीज है इन चांद सितारों में, ऐसी शीतलता है, ठंडक है कि जब भी मोहब्बत की बात होगी तो इनका जिक्र अपने आप आ जाएगा। तुम मिले जो मुझे जिंदगी तो ऐसा लगा कि झूमने गाने लगे और गुनगुनाने लगे और फिर अर्थ जीने के हमें मिल गए। पर कई बार ये भी हम कह सकते हैं कि वो खुशी होती है, उसको लगता है कि हाँ ये बहुत दिनों तक रहे तभी अच्छा है। एक हल्का सा फिक्र होने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी गायब हो जाएगी या ये भी चली जाएगी, और इसी उधेड़ बुन में हम सब लगे रहते हैं, और शायद इसी का नाम मोहब्बत है।

शुक्रिया। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 3:38 और आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे हम राही हैं आपके साथ। ये है हमराही। हमराही मतलब राहें हमारी एक हैं और हम और तुम जब मिले तो फिर रास्ते भी शायद एक ही हो जाएंगे, और जब कोई मिल जाए तो फिर वो रास्ता कितना ही सुनसान क्यों ना हो, बड़े आराम से कट जाता है। वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता कि कब शुरू हुआ सफ़र। और सही मायनों में देखा जाए तो जो रास्ते होते हैं, जो हम सफ़र हम साथ चल रहे होते हैं हमराही, वही मेन होता है। मंजिल का मतलब मंजिल पे जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे कहानी हो सकता है कि शायद दूसरे मोड़ पे आ जाए,

0: तीरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना
0: आज की रात, तो दिल तोड़ो ना।

सपनों वाली रात लिए। अगर रात है और सपने ना हो तब हर एक सांस मुझे खींचती है उस तरफ, ये कौन मेरे लिए बेकरार रहता है, क्या कभी ये ख्याल भी आता है? क्योंकि कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हाँ, जो इंतज़ार है कोई जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, या सिर्फ ये हसीन ख्याल है।

हाँ, मुझे उन्हीं लोगों से दुनिया में शिकायत है। हाँ, मुझे उन्हीं लोगों से दुनिया में शिकायत है। वही लोग जो अक्सर हमें याद आए और उसके बाद फिर कभी

दुनिया में शिकायत है, वही लोग जो अक्सर हमें याद आए और उसके बाद फिर कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी वो बात नहीं हुई।

कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, इस इंतजार में बैठे हैं हम उनकी महफिल में कि वो निगाह उठाएं तो हम सलाम करें। इसीलिए कहते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस जो बात आंखों आंखों में इशारों में हो जाए उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि ज़बान ने कुछ कहा नहीं और समझ में सब कुछ आ गया।

अब इसी बात पे अगर हम ये कहें कि बात हक है तो फिर कबूल करो, ये न देखो कि कौन कहता है। चले थे जिस तरफ वो निशान खत्म हुआ, सफर अधूरा रहा, आसमान खत्म हुआ, लेकिन वो वादे, वो बातें, वो सारी की सारी चीजें हमने कहीं न कहीं अपने पास गांठ बांध के रख ली है। वो इसलिए कि जब हम चाहें उस पोटली को खोलेंगे और खोलने के बाद उसमें से एक एक लफ्ज निकाल के और उसको याद करेंगे, फिर यूं न कहना कि हम सिर्फ और सिर्फ रात के हम सफर थे, क्योंकि उसके बाद भी बड़ी सारी उम्मीदें, बड़ी सारी चीजें हमारे साथ साथ चली। हम राही है ये आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

प्यार से बात शुरू हुई और प्यार पे बात खत्म हो गई। लो, बातों बातों में, प्यारी प्यारी बातों में वक्त भी पता नहीं कैसे चला गया। 4 बजने को है और अब समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके सीमा

0: पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
1: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आर एन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वैत्री कड़गम यानी टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी में आकाशवाणी एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन के गेट नंबर 3 से होगी। ये दौड़ कृषि भवन, रेल भवन और भारतीय रिजर्व बैंक RBI बिल्डिंग से होते हुए आकाशवाणी के रंग भवन पर संपन्न होगी। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजन भाग लेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशक जोखिम कम करने वाले प्लेटफॉर्म IRRA का उपयोग तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। सेबी ने कल जारी बयान में बताया कि शेयर बाजारों की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया क्योंकि प्लेटफॉर्म की संरचनात्मक रूप से आवश्यकता नहीं रह गई थी। ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इंग्लैंड में 136 परिषदों की करीब 5000 सीटों और 6 मेयर पदों के लिए वोट डाले गए। ये 2024 के आम चुनाव के बाद से सबसे बड़ा चुनावी आयोजन है। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बारिश से बाधित मुकाबले में 213 रनों के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। आज नई दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ajay Kumar. The nation yesterday saluted the courage, commitment and the supreme sacrifice of the armed forces on the first anniversary of Operation Sindoor. On this day last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on the 22nd of April last year. In their messages on the occasion, the President, Vice President and Prime Minister described Operation Sindoor as a landmark expression of country's uncompromising stand against terrorism and threats to national security. President Draupadi Murmu called Operation Sindoor as a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism and all forces that threaten our sovereignty and the safety of citizens. President Murmu said the nation salutes the indomitable bravery, sacrifice and professionalism of our soldiers. Vice President C.P. Radhakrishnan termed Operation Sindoor as a defining moment when India responded firmly to terror forces and terror-sponsoring states attempting to disturb the peace, unity and sovereignty of Bharat. In his message, Prime Minister Narendra Modi

4:11 होने वाले हैं, ये है अरुणिमा। और जैसा कि समय और अरुणिमा दोनों ऐसा लगता है कि बस पौ फट गई और अंधेरा वापस।

अब इस बात पे अगर हम ये कह दें कि हम क्या क्या संभालें, क्योंकि कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को, खटक सी है जो सीने में गमे मंजिल न बन जाए। इसी बात पे तलत अजीज की ये बड़ी प्यारी सी गजल है, आप भी सुनिए, क्या पता आप ही के दिल का हाल हो ये।

न जाने कितनी बार शुक्रिया और मेहरबानी करते हुए हम सब अपनी अपनी यात्रा में बस चलते चले जा रहे हैं। यात्रा जो रोजमर्रा की जिंदगी से निकाले खुद के लिए कुछ सुकून के पल हैं, और हर इंसान अपनी जिंदगी में यात्रा तो करता ही है। आखिर किसका मन नहीं करता कि फिर से नई उमंग से जीने का, फिर कोई मन में ऐसी चाहत कि हम आकाश में उड़ें, या फिर किसी पंछी की तरह पे जी लगा के ऊपर और ऊपर उड़ते चले जाएं, है ना। मन भी तो उड़ान भरता है। कई बार मन ये भी कहता है कि सागर की गहराइयों में जाकर के मोती ढूंढ लाएं। कोई पहाड़ की चोटियों पे खुद को तलाशता है, तो कोई जीवन

की इस आपाधापी में पगडंडियों पे लड़खड़ाते गिरते फिर से संभलते हुए खुद को खोजता हुआ, आखिर हम सब यही तो चाहते हैं कि बस चलते रहें, चलते चले जाएं, है ना। और इसी बीच में ये एहसास भी होता है कि ये जो हमारी अपनी अपनी यात्राएं हैं, इसमें हमें जब कोई मिलता है तो कभी हमराही बनता है, हम सफ़र बनता है, और कई बार यूँ भी एहसास होता है कि हाँ, वो शायद रात से शुरू हुआ जो सफ़र था सुबह तक हमारे साथ चलेगा।

संवार लीजिए। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 4:25 और ठीक 42 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये है अरुणिमा। अरुणिमा जो हमें कहती है, और हम इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि रात को सोते समय दिमाग की जो उलझने थी, जिसने हमें जकड़ के रखा था, शायद सुबह होने तक वो सब उलझने खुद ब खुद सुलझ चुकी होती हैं। सोई रहने के दौरान मन न जाने कहाँ कहाँ भटका होगा, लेकिन एक अनजानी दुनिया में इधर से उधर, उधर से इधर होते हुए फिर से एक सुहानी सुबह पे खड़ा हो जाता है। ये और बात है, क्यों कुछ न कुछ सवाल हमारे जहन में फिर भी अटके।

ख्याल तो बड़े सारे आते हैं, लेकिन कोई ख्याल जब मुकम्मल होता है तब जाके पता चलता है कि हाँ वो ख्याल जो था वो कितना हसीन था। और उसके बाद एक और ख्याल, फिर ऐसा लगता है कि हमें ना सोचने की, जो हमें अच्छा लगता है उसको सोचने की आदत पड़ जाती है। और जब भी समय रहता है खाली तो कई बार हम सोचते हैं कि चलो हम वही वाला प्यार प्यार, वही वाला सच सच, या फिर वही वाली कहानी फिर से याद करें, कभी खुली आंखों से तो कभी बंद आंखों से।

कई सारी ऐसी धुनें होती हैं जो हमें याद रहती हैं और उन धुन को हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके साथ गाते भी हैं। कई बार लफ्ज़ याद नहीं रहते, कई बार धुनें भी समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी सब कुछ इतना जाना पहचाना लगता है, यूँ लगता है कि ये तो कुछ ऐसी चीज़ है जो बरसों पहले हमारे पास थी, अब अचानक एक बार फिर से हमें याद आई है। 4:32 और ठीक 38 सेकंड हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में। ये है अरुणिमा। और इसके अलावा जो चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगती है वो ये कि मन इतनी सारी चीज़ें ढूंढते ढूंढते और इतनी सारी चीज़ें अपने आप से कहते कहते न जाने क्या क्या चीज़ें और भी समेटता चला जाता है और उन गुत्थियों के लिए यही छोड़ता है कि चलो इसको अभी संभाल के रख लेते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे। अब आप इसको परेशानी कहिए या आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ तो है जो दिल के करीब है और उसको सुलझाने की हमारी कोशिश रहती है।

मुस्कुराकर मिला करो हमसे। लेकिन ये भी सच है कि होता है असर बातों में, वो भी खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। ये तो बात आप मानते हैं, पर हर एक सांस मुझे खींचती है उस तरफ। कभी कभी क्या ये एहसास होता है कि कौन है बेकरार हमारे लिए? अगर ये सारी चीजें हैं लेकिन

एक चीज और साया बन के उभरती है, और वो ये कि कहीं ये सब चीजें झूठी तो नहीं, एक गलत फहमी तो नहीं, हमारा सिर्फ एक ख्वाब तो नहीं, सिर्फ एक बात तो नहीं। और जैसे ही सुबह होती है हम उसको फिर से रख देते हैं। चलो आगे आने वाले टाइम में फिर बात करेंगे।

लेकिन कुछ बातें और हैं। वो लड़की अच्छी लड़की है, तुम नाम न लो हम जान गए, वो जिसकी लंबे गेसू है पहचान गए पहचान गए। हाँ साथ हमारे इंशा भी इस घर में थे मेहमान गए, पर उससे तो कुछ बात न की अनजान रहे अनजान गए। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंशा जी का नाम न लो, इंशा जी सौदाई हैं।

फिर भी लगता है कि दोनों बहुत करीब हैं। दिन और रात दोनों में कितना अंतर है, लेकिन कुछ न कुछ दोनों का एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। और जब दोनों मिलते हैं तो शायद कभी कभी तो ऐसा होता होगा ना, जैसे कि गुलाम अली साहब की गजल है,

0: हिजर के
1: किस्से, चाहे कुछ भी कह लो लेकिन तुम अच्छे लगते हो। और अब बताओ कि तुम कैसे हो। ये ख्याल अपने आप में बड़ा शानदार है। फिलहाल तो बजने वाले हैं 5, समय हो रहा है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिमी सिवी जॉर्ज ने कल नॉर्वे के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री जॉर्ज ने भारत और नॉर्वे के बीच सशक्त तथा बहुआयामी साझेदारी पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत के शून्य सहिष्णुता की नीति को दोहराया और आतंकवाद के खिलाफ नॉर्वे के सहयोग की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की

भोर सुहानी 5:11 और ठीक 34 सेकंड हो गए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। और भोर हमेशा सुहानी ही होती है, कभी गौर कीजिएगा रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह इतनी रौनकें लेके आती है कि अपने आप से ही लगता है कि शायद पूरी चारों तरफ जो प्रकृति है वहाँ से दुआएं निकल रही हैं।

मरम्मत मुकद्दर की कर दो। उफ, कुछ लाइनें इतनी अच्छी होती है ना कि लगता है कि उस लाइनों में इबादत है, और उन लाइनों को पढ़ने के बाद ही यूं एहसास होता है कि जो शायद हमने दुआ मांगी थी वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि कई बार हमारे पास हम जो चाहते हैं उसके लिए अल्फाज नहीं होते, और जब वो अल्फाज मिल जाते हैं तब लगता है कि हाँ, यही वो वाली बात है। भोर सुहानी है ये,

और इन मधुभरी हवाओं को महसूस करने के लिए सुबह उठना पड़ता है, जी हाँ, और तब जाकर के आपको वो फ्रेशनेस नजर आएगी और एक उत्साह समझ में आएगा कि हाँ आखिर सुबह उठने के लिए इतना जोर क्यों हमेशा से दिया जा रहा है। कुछ तो बात होगी।

ढूंढिए ढूंढिए, ढूंढने से कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं मिलती, मिलती है ना। और अगर आशा और विश्वास की बात की जाए तो असल में वो तो मृग तृष्णा है एक तरह से। मतलब हम जितना ढूंढेंगे उतना आगे चले जाएगा, भागते जाएगा, या यूं कहें कि एक मणि है जो हमारे अंदर छुपी हुई है और उसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है।

शांत से एक लंबी सांस लेते हुए आराम से बैठिए। सुबह सुबह की जो हवा है, सुबह का जो सूरज है, उसको देखिए। प्रकृति के साथ जितना हो सके उतना तारतम्य बिठा के उससे बात करने की कोशिश कीजिए, तो आशा और विश्वास दोनों आपके आजू बाजू होंगे और आप महसूस करेंगे इस बात को कि हाँ, ये बात कितनी अच्छी है। भोर सुहानी है ये आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।

कहते हैं कि अगर आप मुस्कुराते हुए अपनी भोर में उठते हैं तो सुहानी तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि आधा काम तो आपका हो चुका। अपना बिस्तर ठीक कीजिए और यूं समझिए कि एक बेहतर दिन की शुरुआत बड़े आराम से हो गई। और हाँ, मुस्कुराना तो बिल्कुल आप भूलिएगा ही नहीं। कभी कभी हो सकता है कि ये प्रेशर जैसा लगे कि भाई ये क्या ज़बरदस्ती है, लेकिन जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तब अच्छा लगेगा। बहुत सारी ऐसी टेंशन्स हैं जो दूर हो जाएंगी, और कम से कम 8 घंटे की नींद लेने के बाद हम हंसी खुशी बहुत खुशनुमा तरीके से उस सुबह का वेलकम तो कर ही सकते हैं ना।